0: श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। तो जब भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे मथुरा में, तो राधा जी हर समय यही कहते कि मुझे और सुनना है बंसी, और सुनना है, और सुनना है। और जो ग्वाल बाल गायें सब जब कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, सब कान खड़े होकर सुनने लगते थे। उनको इतना मधुर लगता था बंसी, और वो बड़े उत्साह के साथ उनके साथ खेलते भी थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय का आनंद वही जानेंगे, हम तो बखान कर नहीं सकते। बढ़ते हैं आगे सेवा भाग की तरफ। कभी कभी कुछ लोग जो कुछ विकृत मानसिकता के होते हैं, विकृत मानसिकता समझते हैं आप?
1: नहीं, थोड़ा समझाओ।
2: विकृत मानसिकता, राजेंद्र जी शब्द थोड़ा से मुश्किल।
0: विकृत मानसिकता का मतलब होता है कि जिनके मन की स्थिति थोड़ा सा हिली डुली हुई है।
2: अच्छा।
0: हाँ, वे सेवा करने वाले परोपकारी लोगों को भी नौकर मानकर असभ्य व्यवहार करते हैं। यानी जो लोग सेवा कर रहे हैं,
1: अच्छा,
0: उन पे भी व्यवहार सही नहीं करते उनके साथ, उनकी मानसिकता क्योंकि ठीक नहीं रहती, विकृत रहती है, इसलिए उनको विकृत मानसिकता कहा जाता है। यह अनुचित है सभी लोगों को दूसरे के साथ व्यवहार करने से पहले यह अवश्य ही सोचना चाहिए कि मैं जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ यह नौकर है या सेवक है।
2: राजेंद्र जी ऐसा, ये बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। लोग ऐसे मैन मार्क देयर सोम्स मिस ब्रेक फन, तो अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ऐसा ही देखना कि जो ऐसे शब्द, तो मेरा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कैसे था वो शब्द जो आपने अभी कहे,
0: विकृत मानसिकता,
2: विकृत मानसिकता,
0: विकृत,
2: हाँ, जो खेस तलक जो एकदम से ठीक नहीं है ना शांता जी।
1: हाँ, जो दबा रहे
2: हैं। और खास करके जो वो सेवा आदि करे तो लोग उनसे कभी काल के और उनके गलत फायदा उठा लेते ना राजेंद्र जी।
0: जी,
2: तो वो भी ना करना चाहिए। दोस्तों ये संदेश, आज का संदेश जो हम सब अभी लगे हुए हैं कि नौकरी और सेवा, इन दोनों में अंतर क्या है, हम सब कुछ ना कुछ संदेश सुन रहे हैं राजेंद्र जी से, पर आगे में क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता है। राजेंद्र जी कुछ और?
0: हाँ, थोड़ा सा संदेश हो रहा है, इसके बाद एक बहुत सुंदर सा जो हम गाना बजाएंगे। भले ही सामने वाला व्यक्ति नौकर हो तो भी उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उसके साथ असभ्यता करने का अधिकार मिल गया हो। वह भी मनुष्य है, उसका भी स्वाभिमान है, होना चाहिए, अन्यथा लोग आपको ही असभ्य व्यक्ति कहेंगे। हो सकता है कोई कठोर भाषी व्यक्ति आपको जंगली भी कह दे, तो ऐसी नौबत आने पर परिस्थितियों से बचें। चाहे नौकर हो चाहे सेवक हो, सबके साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार करें और आनंद से जिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं। तो क्यों ना हम आगे एक गीत की ओर बढ़े,
2: सुंदर सा गीत की ओर, क्योंकि
0: सुंदर सा गीत
2: शांता का पिटारा से निकाला हुआ दोस्तों, और देखा जाएगा कि कौन सा गीत आज शांता लेकर और आए हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, चला देते हैं।
0: जी जरूर।

0: ता चल। तो गीत गाते हुए साथी गुनगुनाते हुए चले गए, क्यों ना हम भी आगे की तरफ चले। नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, सस्त्री अकाल, जय, इन सारे शब्द हमारे पास फिर भी लोग अंग्रेजी की गुलामी की भाषा बोलकर गर्व क्यों महसूस करते हैं।
1: हम तो डर गए रजेंद्र जी।
0: जो अंग्रेजी शब्द लोग बोलते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, जैसे सारी, सॉरी, थैंक यू इत्यादि। शास्त्रों में 5 प्रकार के अभिवादन बतलाए गए हैं, जिनमें से एक है नमस्कारम। नमस्कारम यानी संस्कृत का शब्द है। नमः का मतलब होता है मैं, मेरा अहंकार झुक गया। नम मतलब झुकना। नम का एक और अर्थ हो सकता है जो है ना, मैं यानी कि मेरा नहीं। आध्यात्म की दृष्टि से इसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने अहंकार को कम कर रहा है, नमन कर रहा है। नमस्कार करते समय मैं दोनों हाथ जोड़कर एक कर दिया जाता है, दोनों हाथों को जोड़कर एक कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि इस अभिवादन के बाद दोनों व्यक्ति के दिमाग मिल गए या एक दिशा में हो गए। हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? अब अगला क्वेश्चन है कि हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं?
2: राजेंद्र, अभी तो मैं डर गई थी क्योंकि आपने कहा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, मैं तो सोच रही आप तो यहाँ से जा रहे हो।
0: हाँ, जा नहीं रहे, लेकिन जाने का तो आधा घंटा भी है।
2: हाँ,
0: लेकिन हम यही बता रहे थे कि
2: इनका अंतर बता रहे थे।
0: जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये सब चीज बनाई गई है
2: जी,
0: उनका मतलब क्या है ये हमें बड़ा पता होना चाहिए। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? भारत में बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ये दरअसल बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति के द्वारा किए हुए उपकार के प्रति स्वरूप अपने समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। अच्छे भाव से किया हुआ सम्मान के बदले बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, जो एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और इसमें आदर के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रस्थान, किसी के स्वागत में उठकर खड़े होना। जैसे कोई आया, आप उठ गए तो उस व्यक्ति को उसको लगेगा आप उसका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, हाथ जोड़कर सत्कार करना। उपसंग्रहण, बड़े बुजुर्ग शिक्षक के पांव छूना। साष्टांग, पांव, घुटने, पेट, सर और हाथ के बल जमीन पर पूरे लेटकर सम्मान करना। प्रत्याभिवादन, अभिनंदन का अभिनंदन से जवाब देना और जय महादेव कहना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज समझा कि बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, आदर किस प्रकार से होता है, शास्त्रों में बताए गए जिन नियम का नमस्कार का क्या मतलब होता है आपने सुना, बहुत अच्छा लगा होगा। अब संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: कहने के तो बहुत कुछ है, पर आपने जल्दी जल्दी से और संदेश हम सबको सुना दिया कि और नमस्कार तथा यानी कि राजेंद्र जी, इसमें जब देखा जाए तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के और संदेश सुना दिए।
0: हाँ।
3: और प्रथम संदेश था कि किसके स्वागत और कैसे किया जाए।
0: हाँ।
3: तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, उसके बारे में थोड़ा और निचोड़ दे तो और बढ़िया होता।
0: प्रस्थान, किसी के स्वागत में उठकर खड़े हो जाना, यानी
3: जो कोई हमारे घर से जैसे आए,
0: नहीं जैसे आपके घर पे कोई आए और आप बैठे हैं।
3: हाँ।
0: कुर्सी पे या सोफा पे।
3: हाँ जी।
0: तो आप एकदम उठ गए।
3: हाँ।
0: और
3: तो उसका महत्व और बढ़ जाता।
0: हाँ,
3: है
0: उसका महत्व बढ़ जाता है और वो व्यक्ति को लगेगा कि ये हमारा स्वागत कर रहा है।
3: पर आजकल ऐसा होता ही नहीं, आजकल तो लोग जो आए किसी के घर पे जाए तो जो हाथ उठा दिए, हाथ दे दिए तो बस उतने भर।
0: हाँ, तो यही तो हम सीख रहे हैं यहाँ से कि क्या होना चाहिए।
3: शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
2: सम्मान देता है।
3: सम्मान देता है।
2: हाँ।
3: तो कोई कभी किसी पे और जाए तो किसी को हम सम्मान यानी कि देने चाहे या तथा ये बात भी हो जाता कि हम औरों को सम्मान करेंगे तो हम अपने को भी सम्मान प्राप्त करेंगे।
0: हाँ।
3: और ऐसा नहीं कि हम बैठे ही रहे और किसी आए तो हम बस हाथ उठा दिए।
0: ऐसा ना। जब हाथ उठाने का मतलब ही है कि यही तो हमारी संस्कृति है, इसी संस्कृति को तो हम आगे बढ़ाने का बढ़ रही है। जब कोरोना का समय हुआ
3: जी बस मैं यही कहने वाला,
0: हाथ वाला जो मिलाने वाला काम एकदम खत्म हो गया,
3: खत्म हो गया
0: और हाथ जोड़ने वाला काम शुरू हो गया। तो हमारे ये तो हमारे संस्कृति में पहले से ही है कि हाथ जोड़कर सत्कार करना, हाथ मिलाकर नहीं हाथ जोड़कर सत्कार करना चाहिए, दोनों हाथों को नम करना चाहिए, नम करना चाहिए और झुक के
3: झुक कर,
0: हाँ ये सत्कार होता है।
3: बस यही तो है संदेश, पर
0: यही तो संदेश है,
3: हर कोई सुख के चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है।
0: हाँ।
3: और यही खोज में हम रहे हैं। और राजेंद्र जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप दूसरा गाने की ओर बढ़ रहे हैं, पर अभी तो हमें नमस्कार तलक हम पहुंचे, क्यों ना तीसरा वाला के बारे में कुछ और।
0: उपसंग्रह गण,
3: उपसंग्रहण, तो इसके बारे में क्या हम सब।
0: संग्रहण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग विद्यालय में गए या हमारे कोई गुरुजन थे
3: जी,
0: या कोई बुजुर्ग मिले जो हमें आशीर्वाद दे सके, उनका हम लोग पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्गों का या शिक्षकों का हम पैर छूते हैं और अपने उनका हाथ अपना आप उठ जाता है आशीर्वाद देने के लिए, तो उसको उपसंग्रहण बोलते हैं।
3: जैसे हमें किसी अपना
2: जैसे आपका पुत्र आपका पांव छुए।
0: हाँ।
3: शांता जी ने कहा आपका पुत्र आपका पांव छुए तो
2: तो आपका आशीर्वाद देना चाहिए,
3: आशीर्वाद देना चाहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों
0: आशीर्वाद देने के लिए आपने सुना होगा भगवत गीता, भगवत गीता में या महाभारत में आपने देखा होगा
3: जी,
0: कि जब द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे पांडव, वो पांव छूते थे तो उनका ऑटोमेटिक अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठ जाता था।
3: हाँ जी।
0: तो भीष्म पितामह यही कहते थे कि तो दुर्योधन को यही समझाते थे कि तुमको उनका सत्कार करना चाहिए ताकि उनका तुम्हारी रक्षा के लिए हाथ ऊपर उठे उठा रहे। तो बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है इस प्रकार से उपसंग्रहण की।
3: तो दोस्तों यहाँ भी एक संदेश आया है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर और कदम पर हमारी सीख, हमारी सोच और हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म होता है, और हम कैसे अपना और कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारा और भाग्य हमारा जो मिलने वाला है जो हम उसी प्रकार से मिलेंगे। आज हम औरों के आदर करेंगे तो कभी हमें भी इसी प्रकार से आदर को जरूर प्राप्त होगा और औरों भी हमारे आदर करेंगे। राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है, पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं आप और शांता का और जो लेकर आए।
0: गीत का बोल है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, तो इस पिटारा से हम इसको छोड़ते हैं आगे की तरफ। और शांता जी का जो पिटारा है वो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है।

0: रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा कूड़ा करकट, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र जी ने सिया को यानी कि आज से जो त्रेता युग में ही कह दिया था कि आगे कलयुग में कैसे होने वाला है, तो आज देख ही रहे हो कि हंस जो है वो कूड़ा करकट पे आ गया है और कौवा मोती पे आ गया। हंस चुगेगा कूड़ा करकट, कौवा मोती खाएगा, तो रामचंद्र जी ने उसी समय ये बात कही दी थी। संजय जी, आप कुछ चर्चा करने वाले थे इस विषय में?
1: चर्चा तो जरूर आपने कहा कि चर्चा करने वाले थे, तो दोस्तों जरूर चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सुंदर गीत को सुन के इसमें कितना संदेश है ना शांता जी।
2: हाँ।
1: कितना संदेश है इसमें, ये संदेश हमें ये यहाँ से मिलता है कि जमीन और मुकद्दर कि एक ही फितरत होता है, जमीन और मुकद्दर, जो भी बोया है वही निकलता है ना, जोंची बोयो वही निकलता है। ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करे, जाने का नहीं। और ये बात को हमें जानना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है कि हमें लोग हमारा इंतजार में रहे, ना कि अगोरे की भाई हाँ आ गया है, कब ये जाने वाला है ना शांता। कुछ बातों को मतलब है और कुछ मतलब के बातें, ये इसका अंतर हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये बात हो जाता कि जब फर्क यानी कि जब से ये फर्क हम समझा, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है। ऐसा है कि ना राजेंद्र जी?
0: हाँ ऐसा ही है।
1: और ऐसा भी है कि मतलब और स्वार्थ के रिश्ता तो कोयले की तरह है, कोयले की तरह। और कोयले के अंतर्गत में शांता जी भी कुछ सुनाने वाला रहा।
2: आप जितने भी पवित्र रहोगे ना, गलत लोग के साथ जब उठोगे बैठोगे तो आप गलत ठहराओगे,
1: गलत ठहराएंगे।
2: जैसे आप पवित्र होकर साफ सुथरा कपड़ा में, सफेद कपड़ा में आप जाओगे, कैसे बोले, काला कोठरी में जहाँ ढेर से कोयला है या कुछ भी है, तो उसमें आप सफेद साफ सुथरा नहीं निकल पाओगे, जरूर से एक दाग लगेगा काला वाला।
0: लेकिन जरा चाहे थोड़ा बचाए के जाना तो ना भी लग सके
1: तनी से बचाए के जाना। पर राजेंद्र जी यहाँ भी ये बात हो जाता है कि कोयला का बड़ा बड़ा बड़ा अच्छा संदेश है उसका। हमारे संतों ने मोई बढ़िया संदेश उसके लिए रखे है।
0: जरूर आप कोयला का संदेश दीजिए।
1: दे दू?
0: हाँ दे दीजिए।
1: दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब कोयला गर्म होता है ना, तो उसे छूने वाले को जला देती है। और जैसे कि शांता जी ने कहा कि जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले को हाथ
2: काला कर देते हैं,
1: काले कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच शांता जी ने कहा कि काला दाग लग जाता है, और इसे भी हमें जानना है और कैसे हम उसे बच सकते हैं। इसके लिए तो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में हम सब अच्छे अच्छे संदेश लेकर आपके लिए आते हैं शांता जी।
2: अनूप जोलाता जी भी एक भजन भी गाए है कि कालक से काली जो है वो कलंक है, काजल से काला क्या है कलंक,
1: तो कलंक है। तो सहायता भी हम सबको गीत को सुनने को मिले। पर राजेंद्र जी आज का संदेश में और क्या सुनाने वाले हैं आप?
2: हम ये पूछना चाहते थे राजेंद्र जी से, क्योंकि इस पे आप थोड़ा गौर देर प्रकाश करें तो अच्छा था, क्योंकि हमारे सुनने वालों को भी ये भी जानना चाहिए और ये भी प्रश्न आए हैं कि अंतर क्या है या संस्कार क्या है, सत्कार क्या है और सम्मान क्या है।
0: संस्कार जो है वो हमें अपने बाल्यकाल से हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। यानी गुरुकुल में पहले जब आप स्कूल में जाते थे, गुरुकुल में वहाँ पे आपको संस्कार दिए जाते थे, और वही संस्कार जो आपको, मान लो आपको संस्कार 18 साल की उम्र तक जो संस्कार दिए वो पूरा लाइफ आपका साथ रहेगा। तो जो आपको संस्कार दिए कि सुबह माता पिता के चरणों छो, सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, योग करो, इसके बाद अपना पढ़ाई करो, फिर अपना काम करो, फिर शाम को खाना बनाओ या कुछ चीज़ लाओ, ये भी एक संस्कार में आते हैं,
2: यानी कि
0: एक सिस्टम में
2: ऑफ फूडिंग
0: ये सब संस्कार में। दूसरा आपने क्या बोला था?
2: सत्कार।
0: जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया और आप एकदम, अभी जैसे बात चली रही थी कि सत्कार कैसा करना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए
2: जी,
0: दोनों हाथ जोड़ के उसको नमन करना चाहिए और उसको जल भोजन, जो जिस प्रकार का जो व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कुछ देना भी चाहिए, भेंट भी देना चाहिए, और कोई अमीर व्यक्ति आपसे केवल मिलने आया तो उसका सत्कार उस प्रकार से करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि जो भी आपके घर में आया, अतिथि सत्कार करना चाहिए। देवता, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई देवता आया है, जैसे आप उसका देवता का सत्कार करते हो, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, अर्पण करते हो, वैसे ही उस व्यक्ति का भी सत्कार करना चाहिए, वही सत्कार है।
2: अच्छा, वो सत्कार है जैसे तू।
1: पर इस पे शांता जी, इस पे आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगा, क्योंकि राजेंद्र जी ने अभी कहे थे कि कोई आए घर पर
2: जी,
1: तो उन्हें सत्कार करना चाहिए, पर जाने का जब समय आया, जो घर को छोड़कर जा रहे, तो क्या हमें भी उन्हें दरवाजे तलक पहुँचाना चाहिए या बस वो कामर में कह दे ओके दुई?
0: नहीं, आप उनको दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए, हो सके तो गाड़ी तक भी उनकी पहुंचा दीजिए, और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, तो ये पूर्ण रूप से सत्कार माना जाएगा।
2: वो सत्कार में
1: हाँ। यानी कि इस पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, पर हम सब ये इन बातों पे आजकल बिल्कुल सोचते नहीं कि पहले ऐसा होता था।
2: पहले ऐसा होता था,
1: हाँ
0: होता था, और अब भी होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा
1: कम हो रहा है, शॉर्टकट हो गया। हाँ
2: राजेंद्र जी, आप एक शब्द भी अभी प्रयोग की, अतिथि और तिथि, इसमें अंतर क्या है?
0: अतिथि मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति आया, वो अतिथि है, और तिथि यानी कि दिन बार जो होता है, तिथि मतलब जो हिंदी में बोलते हैं तिथि, आज कितनी तारीख है, तो हिंदी में तिथि अलग होती है, और अतिथि कोई व्यक्ति आता है आपके यहाँ, पौना, वो अतिथि है, और तिथि जो तारीख होती है उसको तिथि बोलते हैं,
2: और अतिथि
0: अतिथि पौना। तीसरी चीज, आप एक चीज और रह गई, वो बता दीजिए।
2: सम्मान के मतलब,
0: सम्मान किसी व्यक्ति को, जैसे आप कहीं कार्यक्रम में गए, वो आपको एक गुलदस्ता देते हैं या आपके शॉल उड़ाते हैं,
2: अच्छा
0: वो सब सम्मान में, तो व्यक्ति का जब सम्मान होता है तो वो भी एकदम खुले दिल से आपके लिए आशीर्वाद देता है या ब्लेसिंग करता है आपके लिए, और वो खुश भी होता है और आप भी होते हैं, तो सम्मान बराबर का, जैसे कोई आता है आप सोफा में बैठे और वो नीचे बैठे तो सम्मान नहीं हुआ, तो आप बराबर का अधिकार व्यक्ति को मिलता रहना चाहिए, आप सामने बैठे, वो भी सामने बैठा है, दोनों बातचीत करा, ये जो कुछ भी भोजन किया, और उनको आदरपूर्वक सम्मान से विदा किया, वो सम्मान होता है।
2: धन्यवाद।
0: क्यों ना इसी खुशी में हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: राजेंद्र जी, मुझे तो अवसर मिला ही नहीं कुछ बोलने।
0: जरूर आप बोलिए। आप बताइए।
1: दोस्तों, यहाँ एक संदेश आया है कि हर पेड़ फल दे, ये जरूरी नहीं है, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। राजेंद्र जी, गीत चला दीजिए।
0: हाँ जरूर।

0: बहुत बढ़िया, जो अभी आपने गीत सुना है बहुत ही अच्छा रहा। और अब संजय जी, अब हम लोगों का समय काफ़ी नज़दीक है, तो क्यों ना अब हम विदा की ओर बढ़ें, और आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: राजेंद्र जी, ज़रूर कहना चाहूँगा, पर क्या कहूँ, ये तो भी जानना चाहिए कि क्या कहना है।
0: हाँ, तो जो आप कहना चाहते हो तो कहे डालो।
2: आप क्या कहना चाहते हो?
1: मैं बस यही कहना चाहता था कि हमारे जीवन एक ऐसा, इस संदेशों को सुन करके हमें एक पके हुए फल के तीन पहचान होते हैं। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। ये पहचान आपको कभी ध्यान में आया था शांता जी के? नहीं।
2: हाँ, मैंगो उगरता को आम।
1: आप सीधे मैंगो पर ध्यान दिया।
0: नहीं, पका हुआ फल, जब फल पक जाता है
1: हाँ,
0: तो नरम हो जाता है, दूसरा मीठा हो जाता है, और तीसरा झुक जाता है।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ऐसा फल कभी नहीं होता, ऐसा झुका ही रहता है। तो फल का मतलब वही है
1: ना?
0: हाँ,
2: नम्रता।
0: तो व्यक्ति, जब जितना बड़ा व्यक्ति आदमी होगा, वो एक तो नरम होगा, दूसरा झुक के रहेगा, और तीसरा
2: अहंकार से फूला रहेगा,
0: अहंकार से खत्म रहेगा, अहंकार नहीं होगा,
1: नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे कि आपने संदेश सुने हैं कि इस तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति के भी तीन पहचान होते हैं, और पहली उसका नर्मता, जैसे राजेंद्र जी सुनाए, दूसरा उसके वाणी में मिठास आ जाता है, और तीसरा जो कभी ना अभिमान ना कभी यानी कि अहंकार से खड़े होते हैं, उसका उसमें वो आत्मविश्वास हो जाता है, जो आपके और सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं ना।
0: हाँ।
1: और ऐसे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं शांता जी क्या कहने वाले हैं। राजेंद्र जी,
2: शांता जी तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं और घड़ी हमारे तरफ देख रहे हैं,
1: और
2: तो
1: इशारा कर रहे हैं राजेंद्र जी की बटन दबाओ,
2: लागे छूटे ना।
0: हाँ, तो हमारा जो इस कार्यक्रम का समाप्ति की तरफ आता है, तो लागी छूटे ना, सबको पता ही है, और हमें पता भी चलता है कि अब हम लोगों का समय जो है अपना समय बता रहा है, समय अपना समय स्वयं बता रहा है।

लागी छूटे ना अब तो सनम। ये गाना जैसे ही आता है सब लोगों को लगता है कि अब हम लोगों का प्रोग्राम डाउन होने वाला है। तो रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी कि राजेंद्र सिंह का हार्दिक भरा नमस्कार। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि।

सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वह सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। सुने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम, और हम आपको भी बहुत से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए, सुनने के लिए। जो ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म होने को आ गई है, इसके बाद हम आप

जिंदगी छोटी नहीं होते है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते है, जब तक रास्ते समझ में आते है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंचे हैं, आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। हमारे साथ देने वाला शांता खेमाई और हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए, और मैं हूँ आपका सेवक संजय, सभी को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ और फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय, और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे, या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

क्योंकि इस बात को भी हम जानते हैं कि जब इंसान का वक्त और हालात खराब होता है तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फसल जाए पर जुबान को कभी फसलने मत देना। जैसे पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण

आए हूँ संजय और कुछ न कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

विषय से आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं। छोटे छोटे शब्द है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है, सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

ये भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? की लोक और वक्त और हालात। तो कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोक, वक्त और हालात।

कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, याद रखो कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

बात को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

और मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हबन इन अतलीफन,

रूहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो। और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं? क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो। और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम क्या करते हैं। हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? कि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

धुन हिंदुस्तानी रेडियो है। आप हमारे पास जरूर स्टूडियो में आ सकते हैं। हम तो हर वक्त चाय तैयार रखते हैं। चाय तैयार रखते हैं आपके ही मुलाकात की फुर्सत नहीं।

आपके पास टाइम नहीं है और हमें क्यों टाइम नहीं है। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

छोटे छोटे शब्दों छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

क्योंकि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। और आप किसको भरोसा कर सकते हैं?

संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा, जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। माँ बाप कभी गलत नहीं होती। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

कहे गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

हो सके तो, हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीप पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं, गुरुजी ने इस बात को कहे थे, पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

में समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सब्र करना सीख लो, सब्र करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पुत्र, मित्र, चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे।

ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

तेज लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाते हैं। तो दोस्तों, बोझ सिर से ना ले, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।

साथ दिए कुछ समय तक, यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूं आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे वारफन हेत ग्रोटस्ट आंतल 364 इन हेत हिंदी वास

थोड़ी तू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

इसे दोहरा दिया जाए। क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: 2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुराने फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुराने फिल्मों का नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है थे, तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है इसी तरह से सूरीनाम में भी। अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।
1: यीशु के

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे

Houseful 5 se nikalagayay sundar sagit. Comedy film जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, गिनती में देखे कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं और उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

महलेस 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में, एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, इन द यार 70, द यार 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ।

खुश हो, अच्छे बात है आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनो लो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था, मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि वे महान हैं, क्योंकि वे ऊंच पद पर है या ऊंच विद्वान हैं, और इसलिए भी कि वे अमीर हैं। ये सोचने के बहुत सारे कारण हैं मित्रों कि वे बहुत महान हैं। लेकिन आप केवल तभी महान हैं जब आप अपनी खामियां देख सकते हैं। महान तब है जब आप उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तब है जब आप दूसरों को उनकी खामियां के साथ स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। तब आप न केवल महान हैं बल्कि महान भी हैं भगवान की नजर में। क्या आप भी एक अच्छे इंसान हैं? क्या आप में है ये गुण? और यदि आपके पास है तो इसी तरह आगे जीते रहिए, फिर मृत्यु के बाद भी आपको एक महान अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाएगा।

दोस्तों, सुखी आत्मा कौन है? मैं कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं। नंबर एक, एक खुश आत्मा दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देती है और इसके बजाय खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे नंबर, एक खुश आत्मा वो है जो लोगों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। नंबर तीन, सुखी आत्मा वो है जो ये समझे कि हर कोई अपने हित में सही है। चार, एक खुश आत्मा वो है जो जाने देना सीखती है। एक खुश आत्मा वो है जो किसी भी रिश्ते की अपेक्षाओं को त्यागने में सक्षम है और देने की प्रवाह करती है। नंबर छः, एक प्रसन्न आत्मा वो है मित्रों जो ये समझती है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी शांति के लिए करते हैं। मित्रों, अब आपकी बारी है कि इसे लेकर आप क्या करेंगे?

मित्रों, जब समय खत्म हो जाएगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा, वो समय फिर वापस कभी नहीं आएगा। अन्य समय आएंगे, लेकिन इच्छित समय दोबारा और किसी के लिए भी नहीं वापस आएगा। इसलिए क्रोध न हो और उन चीजों या लोगों में न फंसे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इसके बजाय आगे बढ़ें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं, चीजें जो आपकी जिंदगी बदल देती है। दूसरों के बारे में तनाव लेने से ज्यादा ये आपकी हानि करेगा। मित्रों, कभी भी अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद न होने दें, क्योंकि आप भी हर सेकंद के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। क्या आप कृपया इसे ध्यान में रखेंगे मित्रों?

भाई बहनों, जीवन कठिन है क्योंकि हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि लक्ष्यों पर। ये वह तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए सोच विचार कर करना चाहिए। मित्रों,

सर्व कार्यशु सर्वदा आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों प्रिय आत्माओं प्रिय भक्त जनों आपको हार्दिक से स्वागत है। एक बार फिर इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए एक बार फिर सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। नमस्कार, राम राम हो, शास्त्रीय अकाल हो। यहाँ से हम आरंभ करेंगे स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम दनाहमा का इस रात नंबर 6 से। दनाहमा का इस रात नंबर 6 से फाहोन हिंदू बास स्कूल फरेनखी अल खमेन हिंदू ऑन द वेस्ट के तरफ से हम सर्वन करेंगे हनुमान चालीसा।

सुंदर हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम पेश किया गया है दनहाक मकाइसरात नंबर 6 से हिंदू स्कूल फाउन हिंदू स्कूल फरेनिंग अलखमेन हिंदू ऑनरवेस के तरफ से। दनहाकी कुनितोस्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार नेदरलैंड से परिवार चांद कुरबिन श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेंगे हम यहाँ से।

अति सुंदर अति सुंदर भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पेश किया गया है धनाखेक न्यूतोस्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में है। श्रद्धा भक्ति के साथ ये खूबसूरत दिवस में खूबसूरत भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। चिड़िया बोल रहे है, चिड़िया बोल रहे है। रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में। रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात सेसनफेयर तक से सरस्वती माता भवन से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री राजकुमार महातम जी की तरफ से हम सोने

देवी दिन घुराई की आवाज में सुने हमें कृष्णा कैसे सुदामा से अपने मित्र निभाए है, पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों दोस्तों फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में पेश किया गया है रोटरडाम होपफुली टेक्सस वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात से रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार माथम जी के तरफ से आप सभी को एक शुभ दिवस पेश कर रहा है। देन हाँ लेस्कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथांदर बेफे के तरफ से हम श्रवण करेंगे हरि दर्शन की प्यासी उस्ताद रामदेव।

अवश्य हरि दर्शन के प्यासी है अखिया। उस्ताद रामदेव राम रामदेव चैतू की आवाज में श्रवण हमने की है, पेश किया गया है नन्हाखलाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा खुरोथांदल बेफे की तरफ से। चले एक बार फिर दनाखलाइस के फेन फोर पार्क से, इस बार है सुंदर ग्रोथहांडल। सुंदर ग्रोथहांडल इन खुरुंते एंड फ्रॉइड, इनका मालिक जो है जी हाँ परशुराम मोहनलाल जी, श्रीमान परशुलाल मोहनलाल जी के तरफ से हम यहाँ से है सरस्वती वन।

अति सुंदर अति सुंदर सरस्वती माता के वंदना यहाँ से श्रवण हमने की है। पेश किया गया है दनाखलास का फेम फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल एंड ग्रोथ एंड फ्रूट मालिक इनका ये है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। नागलाइस कैफे एंड फूड पार्क से इस बार है बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव मालिक जो है हरिदत्त रोहित देव नारायण। खूबसूरत दिवस में सभी भक्त प्राणियों के वास्ते सभी सुनने वालों के लिए

जिस घड़ी हम जाते हैं अपने प्रभु के शरण में, दया तो अवश्य ही करेगा। पेश किया गया ये सुंदर सा भजन मेरे प्यारे सुनने वालों, देन हाखलाइस कैफे इन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण की तरफ से। श्रीमती लैन बाबू राम जी, श्रीमती लैन बाबू राम जी देनहा के निवासनी है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते खूबसूरत दिवस में मंगलमय दिन होवे सभी के।

सूरज रतन राम बच्चन, सूरज रतन राम बच्चन जी की आवाज में ये सुंदर सा, अति सुंदर सा भजन हमको सुना दी है और पेश किया गया है देनहा के रहने वाली श्रीमती लैना बाबू राम जी के तरफ से। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। श्री नाम अली फॉर नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में सुप्रभात मंगलमय दिवस कहते हुए श्रवण करेंगे हम इस बार राम दुलारी चुनी की आवाज में।

राम दुलारी जूनी की आवाज में श्रवण की है ये सुंदर सा राम भजन। ये सुंदर सा राम भजन बैठक स्टाइल में हमने श्रवण की है, पेश किया गया है श्री नाम अली फॉर नो मैनकंडाम हुक इंदिरा गांधी वेक से, श्री भक्तराज श्री शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर के तरफ से। सभी को सुप्रभात सुप्रभात और मंगलमय दिवस कह रहा है। देन हॉक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से हम यहाँ पे भी श्रवण करेंगे एक सुंदर सा

चंद के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब के लिए पेश किया गया है। दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से ये खास भजन।

बीतता जा रहा है उमरिया, इसे संभालो, इसे संभालो, संभालो संभालो, नहीं तो यूं चला जाएगा, बाद में पछताना ना पड़े। बहाव छिनगु, बहाव छिनगु जी के आवाज में कि धोखे में बीते उमरिया, बीता उमरिया। फाहोन रेडियो की डायरेक्शन स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के

अवश्य अवश्य। जय माता पिता, जय माता पिता। उस्ताद हरि शिव बालक जी की आवाज में हमने श्रवण की है, पेश किया गया है फाहोन रेडियो की दिराक्सी स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में। जी हाँ, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम हर सुबह हर रोज की तरह आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। देने सुनने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार इस वक्त के लिए।

प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए मेरे यानी कि शांता की, सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से आरंभ किया जाएगा आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम।

कहते हुए द नाहलेस के फिल्म फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा श्रोता दल बेवे के तरफ से श्रवण करेंगे हम हनुमान चालीसा।

जय जय राम हनुमान चालीसा के साथ यहां पर आरंभ किया गया है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। शुरुआत किया गया है दनाख लेस कंफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा खरूथ हांदल बेफे के तरफ से।

शुभ लाभ होवे जरूर से, शुभ लाभ होवे हम सभी को आज इस खूबसूरत दिवस में, और ना सिर्फ आज ही के दिन बल्कि हमेशा हम सब के ऊपर गणपति बाबा का आशीर्वाद रहे और शुभ लाभ हमको मिले। गणेश वंदन हमने श्रवण की है दन हाख मका इसरा तमर छे से हिंदू बास स्कूल फाउन फरीन खिन अलखमीन हिंदू ओंदरवाइस की तरफ से।

सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में आपके लिए पेश किया जाता है। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल के

तेरे द्वार खड़े दुखियारी, सुंदर सा बनवारी भजन हमने मिलकर श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है ननाखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल इन खुरुंते एंड फ्रॉइड मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी के तरफ से। रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रात 64 तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राण

गणेश भजन फिल्मी तर्जनी मंडोले की धुन पर ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर श्रवण की है पेश किया गया है। रोटरडैम होगफ्लिक टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात सेसफेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से सुप्रभात कहते हुए हमने श्रवण की है।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के, ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है, वो आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है।

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छा करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर, अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें ज़रूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें। अपना जीवन जो है सफल बनाए, भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान, जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना, तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारी, सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। हर नया दिन तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ अवश्य लाए।

ये सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं, और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना, आगे वाला दिन बे शाम होगे रात होगे ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Liefsein tegen uw medemens en niet alleen tegen uw medemens. Maar lief zijn tegen alles. Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad. Lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben, dat we die kunnen inademen om ons andere stap te zetten. Aur kehta hai ki jiska jaisa charitra hota hai na uska waisa hi mitra hota hai. Shuddhata hoti hai vicharon mein, aadmi tab पवित्र होता है। नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नई, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नई और नजर कर दे।

सोलफुल सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुँचे।

सुबह की वही तुम्हारी नाम ले आऊं। सुबह की हवा तुम्हारा ले आए, सुबह की हवा तुम्हारा नाम ले आए, दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए। हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

0: शिव मेरे है और मैं शिव का हूँ। ये दो तीन लाइन अच्छे है, इसे हम सुने कि फूल दोबारा कभी नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजार के मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्त, पर हजारों गलतियां माफ़ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। एक मिनट बाकी है 8 बजने में, 1 मिनट बाकी है 8 बजने में, इसका मतलब यहाँ से मुझे रिक्लाम विज्ञापन लगाना है, उसके बाद आपसे ज़रूर से मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3527 247 info@radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register.

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

तेताली पैताली गणपति बप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चुन हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

प्रयागराज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर लिए। जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है? जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ, वो आप है।

Hari Keshav, Hari Mukunda, Hari Narayana, Hari Noam had blithed and moy bhajan. कहता है कि जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर दूर बन जाओ। और ये भी बहुत सुंदर लाइन है, सत्य वचन है दोस्त, कि ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। सुनिए, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। एन फोर हाल्फ नेगा हो चला है। आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम जहाँ से आप और मैं जुड़े हैं। हाल्फ नेगा हो चला, जैसा आपको पता है, ये रविवार से इतला किया गया था कि आज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ओफे ओपमार फरफूर स्टॉकिंग में रहेगा। और वाकई में रास्ता बहुत शांत था आज सुबह में। पता नहीं कर्मचारी लोग जो दफ्तर जाते थे वो कैसे गए, पते ही वर्दक क्योंकि ओक वन हाउस ऐत वैरकन en het werk begint bij heel veel plaatsen dan ook 8:30, 9:00. Staking is af en toe ook wel nodig om de staat ook wakker van te krijgen. Nee, to je sarkar apan manmani ke bhi karte rahenge.

0: अरे अरे ए ए ए ए
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।

कलम आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा। और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

नदिया की धारा, सुंदर गीत किशोरदा और आशा भोसले जी की आवाज में, झुकती घटा गाती हवा। फिल्म धूल का फूल से सुनेंगे।

धूल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक सफर। वही तो, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मैं नहीं जानती, आप तो भी नहीं जानती। फिलहाल

विज्ञापन यहाँ से हमने श्रवण कर ली है और आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर ये हसीन प्रोग्राम में, ये हसीन मौसम में। Let goed op jezelf, mijn lieve mensen, want u bent belangrijk. Hem belangrijk.

0: इंतज़ार जिनका था वो हाजिर हो गया है। तो यहाँ से हम बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ। और आप आकाश में हैं पंडित जी, स्वागत है आपको।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कुमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम भृगुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च उमयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वाय च सूत्राय च मोक्षोक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसारिक सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर यथायु मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीता राम पहुंचे। खास करके रेडियो उफान को जो मालिक है मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया धन प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितने आर ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने रेडियो फान के माध्यम से कितने मधुर कंठ से हमें आपको स्वागत कर रहे थे मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनने वाले हर बुध के तरह आज भी भगवान का अनुकंपा कृपा हुआ ताकि आप सबके बीच में कुछ ना कुछ संदेश में धर्म के यानी धर्म संदेश आप तक पहुंचा सके। हम गीता को जाते हैं। गीता के नौवा अध्याय में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं मैं सब वो बात मेरे ऊपर भी लागू होते हैं ना। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं भी उनमें भी प्रगट हूँ। कौन कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान। इसमें भक्त के भाव की प्रधानता है। भगवान सभी जगह विराजमान है किंतु बिना श्रद्धा के उनसे कोई कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता। और वही बात जाकर के जो कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं प्रभु राम जाकर के किष्किंधा में किससे कहते हैं हनुमान स्वामी बाबा जी से समदर्शी मोहे कहो सबको सेवक प्रिय अन्न गति सो कहने एक तात आकाशवाणी के सुनने वाले ये है सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। प्रभु राम कहते क्या कहते हैं सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं पर मुझको सेवक प्रिय है क्योंकि वो अंतर गति होता है। इसमें भाव ही प्रधानता है। अतः अपना भाव उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। सबको उत्तम भाव से देखने पर देखने वालों को भी लाभ है और जिसको देखा जाता है उसे भी लाभ है। इसी प्रकार दूसरों को दुर्भाव से देखने पर देखने वालों को भी हानि है और जिसे देख जाता है उसमें उसकी भी हानि है। आकाशवाणी के सुनने वाले हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो गीता में बात वही बात रामायण के माध्यम से आपसे बीच प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। भाव से भक्ति होकर शरणीपन यानी शरीर बन जाते अत इस तरह कहने और सुनने वाले दोनों को ही सेवा हानि का कोई लाभ नहीं है, ऐसे व्यवहार से दोनों का ही पतन है। अतः ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवहार, हम वहां भी जानते बात, उत्तम व्यवहार जिसके साथ उत्तम व्यवहार किया जाता है वो भी सुधर सकता है। एक व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं है और उसके हम विश्वास करते हैं तो दिन पाकर वो विश्वास बन सकता है, क्योंकि वो समझता है कि वे मुझ पर विश्वास करता है ना, कि वो मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे इनके विश्वास अनुसार ही रहना चाहिए ना। इस प्रकार हमारे ऊंचा भाव से उसका और हमारा दोनों का उत्थान होना संभव है। हमें सबको उत्तम भाव से ही देखना चाहिए। बात हमारे ऊपर भी लागू होते है। आकाशवाणी के सुनने वालों, हमें सबको उत्तम भाव से ही देखना चाहिए। अपने स्त्री पुत्र भाई बंधु मित्र आदि कोई अवगुण हो तो उसे दूर करने के लिए उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए और उसे गुण बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से उसके साथ अपना प्रेम बढ़ता है और उसका सुधार भी होता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को प्रेम के तत्व समझाते हैं। कौन? प्रभु राम। हम आगे बढ़ते आकाशवाणी के सिर उत्तर कानपुर जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मानना को दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कहने के साथ है प्रभु सेवका अवगुण कभी नहीं मानता, वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव का है। इस पे थोड़ा विचार किया जाए। प्रभु सेवका अवगुण कभी नहीं मानते, वो दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमलता स्वभाव के हैं। अतः हमें सबके साथ दया प्रेम विनय कोमलता त्याग और उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम जो ज्ञानी लोग हैं ना, तो अच्छाई देखते खराबी को उसको धारण नहीं करते। रामायण में हम आपने सुने ना, वहां पर एक हंस, एक चिड़िया का नाम हंस है, तो चिड़िया के जो हंस चिड़िया है एक पात्र में एक थारी में दूध और पानी उसे मिला दो तो आकाशवाणी के सर उस चिड़िया जो है ना तो दूध पी लेते पानी छोड़ देते हैं। कहने के तात ये है जो ज्ञानी लोग है ना, जो भक्त लोग है ना, तो अच्छाई लेके उसको धारण करते हैं, जो अवगुण उसको त्याग देते हैं। लेकिन हमारा आपका क्या स्वभाव होते हैं, कब हम जाते हैं वहां अच्छा जग चल रहा लेकिन एक ही गलती हुआ तो गलती हम प्रचार करते हैं। रामायण गीता ही सिखाते हमें कि अवगुण जो है उसको हम त्याग दो, जो अच्छा है उसको लेकर के हमें धारण करना बहुत जन्मों के अंत के। कृष्ण भगवान कहते बहुत जन्मों को अंत के, जन्म में तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सब कुछ वो से देव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो बात अभी मैंने रामायण में कहा वही बात गीता में प्रभु राम कहते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं। हम वहां भी जानते बेर मैं बात दोहरा रहा हूँ कि सब मैं सब जगह मैं हूँ। फिर गीता में कहा गया है ये मम पश्यते सर्वत्र, जो पुरुषम पूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझे वसुदेव के ही व्यापक देखता है। अखिल ब्राह्मण जो कुछ भी जगत है वो समस्त ईश्वर से व्याप्त है, के ईश्वर से व्याप्त है। समझना चाहिए आकाशवाणी के सुनने वाले, जैसे बादल में आकाश व्यापक है ना, वैसे ही भगवान सब में व्यापक है। अतः सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है और सबका आदर करना ही भगवान का आदर करना है। ये भाव भी बहुत उत्तम है। यदि ऐसे भाव भी ना हो तो सब भगवान के भक्त है या सब भगवान की प्रजा है, अतः सभी हमारे भाई है। इस प्रकार देखना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर के अंश होने से ईश्वर का प्रजा भी। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें हम रुक जाते हैं, जैसे हम वहां भी जानते हैं कि दूसर के आदर करना परमात्मा का आदर करते हैं। एक बार आकाशवाणी के स्वर से क्या हुआ, तुकाराम आप जानते हैं ना, तुकाराम को, तुकाराम एक भक्त कृष्ण भगवान के हैं। तुकाराम रोटी बना कर करके और भगवान को अर्पण किया। वहां एक स्वान देव आकर के, वो जो रोटी है ना, स्वान देव कहते कुत्ता लेके भागते हैं, लेकिन तुकाराम जानते हैं दूसर के आदर करना समय परमात्मा विराजमान है। तुकाराम दौड़ते कुत्ते के पीछे, एक कन्हैया रुक जाओ, झोर रोटी क्यों ले जाते, उसमें थोड़ा मैं घी लगा दू। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, जिसे हम कहते स्वान जो कुत्ते थे, वो जा करके प्रगट हुए कौन, कृष्ण भगवान। कहने के तात है कौन भाव सा हम देखते हैं, तो कृष्ण भगवान जा करके वो स्वीकार किया। कहने के तात ये है, जो भाव सा हम देखते हैं भगवान, वही भाव से वही रूप हमें दिखाएगा आकाशवाणी के सुनने वाले। एक बार ऐसे होते हैं कि तुलसीदास जी ने वहां पर मूर्ति, किसके मूर्ति देखा, तुलसीदास की, भगवान को मूर्ति वहां पर देखते हैं। लेकिन वहां पर जा करके तुलसीदास जी कहते हैं, वो किससे, तुलसीदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान की मूर्ति था, उनको प्रणाम करते, हमें आप, हम आपके देखना चाहते धनुष बाण से। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, वही मूर्ति जा कर करके कृष्ण भगवान को मूर्ति जा करके किस पे प्रकट हो गए, राम के रूप में। तो तुलसीदास जाकर प्रणाम किया। कहने के तात आकाशवाणी के सुने लो, जो भाव सब भगवान के जानते भगवान वही रूप हमें दिखाते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, युवानी द्वारा अपना पोर्शन विराम करने जा, लेकिन इसमें ध्यान करना, सॉरी, प्राणी मात्र है अलग अलग, परंतु सिद्धांत मूलता एक है। जाति और मत अलग अलग है पर मानवता एक है। इस प्रसून सब अलग अलग है पर सब की पूजा एक है। दृष्टि व्यक्ति की अलग अलग है पर वो ईश्वर एक है। हरि ओम, हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्ति निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग्। हरि ओम, शांति शांति, हरि ओम। आप सभी को धन्यवाद।

जी हाँ, सुनने वालों से ही फन तीन ओफर नहीं का हो चला है और श्री पंडित जी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और हम सब की सेवा की है। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है। गर्मी का मौसम है तो आप सुने कि पंडित का गला थोड़ा से सूख गया था, ये भी एक चेतावनी है कि हम अब पानी अपने साथ रखे। हाँ, आज कल और परो हित खौलफ है।

kanten met dynamische energiecontract betalen woensdagavond hoogste prijs ooit. Mensen met een dynamische energiecontract betalen woensdagavond de hoogste prijs ooit voor een kilowatt elektriciteit door hitte en extra vraag naar elektriciteit voor koeling loopt de kwartierprijs op tot een recordhoogte van 1,20 euro per kilowatt. News mein aap sune to yahan se main ek baar phir aapko bata deti hoon. Aur wo ye hai, Deutschland will pensioenleeftijd verhogen tot 70 jaar. Duitsers moeten in de toekomst waarschijnlijk langer doorwerken. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar. पहले कहां 60 jaar था, उसके बाद 65, nu 67, en dan willen ze nog naar 70 jaar. भला सोचो हमारा क्या होगा जो व्यक्ति काम करता है, कब अपना जिंदगी को वो खनित करेगा, तो इसलिए ना अगोरो पेंशन मेरे दोस्त, ना अगोरो पेंशन, पेंशन पता नहीं हम देख पाएंगे ना या नहीं, बस आज से विचार करो, अपना जिंदगी में कुछ हंसी खुशी लाओ, जाओ यात्रा पे जाओ, छुट्टी मनाओ, ये ना सोचो कि 60 या 70 60 होएंगे या 70 होएंगे तो हम कुछ करेंगे, वक्त निकल जाएगा, सेहत जो है वो आज जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन हमारा शरीर का अदलाव बदलाव होता है ना, जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसको भी हर रोज नया नहीं रहता, उसमें मांग का मेहनत भी हो जाता है, इससे भी हमारा शरीर है वो युवक नहीं रहता है। एनर्जी दी नेम्ड ओक फंतेत तो तेत अफ कि जब तक एनर्जी है एनर्जी करो,

हम हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकंतीन त्वें सहस्त की ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

चक्के पे चक्का फिल्म ब्रह्मचारी से सुनाई दी हमको मोहम्मद रफी जी, साज और संगीत शंकर जयकिशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले, फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

गन के तले नीले गगन के तले सुने हम, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

give me a awesome, awesome, lovely, awesome. थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज़ में।

कलम बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में श्रवण की है हमने। कोई चांद सितारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से प्यारा है। कोई चांद सितारा है तो कोई फूल से भी प्यारा है, जो दूर रह कर भी हमारा है। जी मेरे सुनने वालों, जो दूर रह कर भी हमारा है वो नाम सिर्फ तुम्हारा है। आपने ठीक सुने। दस मिनट बाकी है 10 बजने में।

इसी गीत के साथ मैं आपसे रुखसत होंगी और फिर आपका आशीर्वाद रहे, आपका प्यार रहे, तो आने वाले समय में जरूर से आकर यहाँ पर रेडियो पे सेवा करूँगी आपके। तब तक के अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और ये दिन जो है प्यार से भरे रहे। गर्मी का मौसम है, अपने आप को भी ख्याल रखना। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी नमस्कार।

Kalana Jani Uchinich, Kalana Jani Jan, Sorsuti Manta DJ, Hamko Apni Anzir Bade. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम से शिकाल है जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा प्यार की पैगाम।

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश की और अन्य देश के और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रिश्तक से सुनाएंगे।

है हमारी जनता। अब देखो भैया सूरीनाम में नवा रखेरिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और ओ सब लाइफ मार मेंज हीर एंड दार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो ओ अरे भैया पास्टर है मैये तो लोग जानो ये हुई मैये है का बोले गो पास्टर है तो एक के सबन मांगे है रखेरिंग रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलांत के और एनडीपी के रखेरिंग गर्ली रुसलांत और जीमोन एक के बनुम करी से मैये के इस्राएल के अम्बाजादर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पड़ता है और फ्रैक्सी लेडर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हर जो पेयल के बोले सबन बहुत फरबास है कि रखेरिंग जो है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकले यारन पार यार खली ने इला पालास्टाइन के एरकेन करी से जैसे को देश और बोले तो इस अब का करे है जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बनुम करी से हुआ रेसी देरेंद अम्बासाडर फॉर सूरीनाम से फॉर द स्टेट इसराइल। तो मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले है गा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालेस्टाइनन फुलकॉमन इन स्ट्रेसन में ने नॉर्मन एंड वार्ड फॉर सूरीनाम एकर मारे में मेल्विन बोफा बैतलांस साके और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्टांड बिलैटरल रिलेशनशिप विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन geïnitieerd en die nog lopend zijn, boze Israël, boze hier projecten krijgen, boze hem lukke contacten hè, te boze kijken naar kerb, te boze hega landbouw, boze landbouw initiatieven, projecten gezondheidszorg, boze campus van universiteit voor vloeien van uitbestaande relatie doen hè Israël, kerbaar in bouwfa boze hè, volgens de minister is het standpunt van Suriname uit 2011 onveranderd, boze hem lukke hè. NPR-fractieleider Pauwie Regio stel dat je Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemd hem daarom dat de regering van Israël en de ambassade daarin meegeeft. In maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezen dat doodstraf doet gelden uitsluiten voor mensen door etnische niet zo groep waar religieuze geloof voertuigen. De Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 meer. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft diplomatieke relaties uit Amerika, Zuid-Afrika aangeklopt. Toen ik er waren bolle 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinaamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten naar Chahin. Hamluk ambassade hoe naar Chahin ga. Omloon Tulunjane hega Israël. Palestijnen ke utrafde musulman ke hua dagi se aur tulo jano ho so mohar jo wo bhi musulman hai aur ek wa malai bhi musulman hai to usab natuurlijk voor de muslim chiefs opgenomen ki palestijnen ke dagi se itrad hai aur bole hum log ke hiya ke ambassade jayega hua israel mein aur baufa bole hai israel ke bole ke tra project ab ni suriname mein chale hai bole hum log ke khadnu sakhle khega NDP-parlement E.B. Jones verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM-landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM-landen, inclusief Suriname, zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen. To E.B. Jones bhi bole hai chahenga ambassador ho dhare ke
तो एकर बारे में भैया हम जाएला सूरीनाम में बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर एगो देई पे भैया अख्तन डरत एगो ए हाफिरन डरत और देई टू फिरत इस भैया मदरक्स के बारे में फॉर दो फन मिडल भैया एंड देई नेमर अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन खो अंदर ऑफिसर स्कोटुरा भाई द द्रीताल अलैन ब्रिगेडियर रहा फन पुलिसी इस से फोर खले ने हम सिपाही अब सबके अंदर सुक करे नारकोटिका के द De afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren. Hangende onderzoek door de politie. Kijk daar hem tje laai bolila. Kie Suriname ket heer sipahi ke bhaiya. Biswaas na hai. Dekhyo mahanga mahanga auto chalawe bhaiya. Puchye kitra salaris hai. Ta u salaris se admi khali ghar chalai seke. Ta tu kahan pahile baate itra dher paisa. Aur jai ke baki huwa pe bhaiya. Glat hai. Glat. सिपाही इस सब अंडरसुक ना करे ब्लास्टिंग दीज और वो सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने कराकाम जब सुनियो भैया ते कराका में बोले दृक्ष जरे हैगा उची जो बारा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया हाँ अब जाइए भैया सूरीनाम से फरेनिंग फन इकोनॉमिस्ट सा इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम का नाम बा फेस उसे बोलेगा बखरेब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वर्ल्ड वाइड बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंक के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festieven Debi Persaat bole hega IBC me bole hega moeilijk na samaj pawe u ki kahe ke Starlink volgens hem voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet over al dure infrastructuren hoeven aan te leggen. Toen waren een beetje over al die kiezen bij je लेकिन न्यूज ज्यादा है तब देखो भैया हम जाए साउथ कोरिया में भैया हुआ के वो पुराना मिनिस्टर 25 बरिस के जहल पाई से साउथ कोरिया के बातचीत है 25 बरिस के भैया फॉर रोल इन अ नो टू स्टैंड के बारे में वो रोल ओके रहा तो एक 25 यार के बोले जोनी प्रसिस करी से काम तो हुआ के पुराना मिनिस्टर यूसुशी के साउथ कोरिया के ओका नाम बा Park Chung Yee बोले रेखबांग साउथ ने सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद अने भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फान स्थान फान बलेख दोर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा अने प्रोबेर Met de noodmaatregelen in het parlement buitenspel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea. En alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal. Want ze resolutie aannamen om de staat van beleg. Terug te draaien mensen. Bolles Ruiterrol bij de toestaan. De ISEP regering ke baantje te bhaiya. Jahan pe tu jane ego baithe. Ek wak oise kare he. To ye baat hai hamare janta South Korea ke baare mein. To hamare pyare pyare mausi lon bhaiya. और ये यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एकर बारे में दीबतेर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे है और दरस आदमी मांगे हैं कि पालस्तीन के अने इसराइल के अंबासादर बने के
और यह मैय के बारे में भैया बड़ी गर्मी है हाँ कोडर रोड इन स्टेट्स मेर यूरोपीय लंदन फरवीक एक्सट्रीम है तक गर्मी बहुत है नीदरलैंड बोले फॉर ऑल नो स्प्राके इस फन कोड और आए हैं यहाँ पे नीदरलैंड में कोराया है और आए हैं वर्ड इन स्टेट्स यूरोपीय लंदन कोड रोड अफगेवन वीकेंड एक्सट्रीम हित इटालिया में भैया बोले हैं बोले इन मेडस 15 स्टेट 15 शहर में सेवन कोड रोड करी से रोमन में मिलान से इन वोडस अपखरूबन बोले तेजस वर्म्स दाख दिले बिनन तबले इवन भीतर घर में रहिए और बोले जियो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder de hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hoe via Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte se ban hoe je he. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe paure via de paard. और बोले फ्रांस ऑथोरिटी वास क्यों करे है कि जइयो पड़े पौड़े तना बुढ़ियो जा ऋषि को बड़का है फॉर द अइद्रोकिंग फ्रांस के रेक्टर वेट तैदक अइस्कस्काकल ऑन दैट इट कूल वाटर वार्म वास गवर्दन के रेक्टर देने है बोलो के बंद करी से बोले पनिया गरमाई जा है और इन बेल्जियम इस हित क्राइसिस में से बोले दिखतर बे इस एक्सट्रीम हित बेल्जियम के रखे रिंग बोले मंगलवार के वो किस सेंट्रम खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले के कूलर रहे 25 ग्राद अब बोले दैट इट अ सोनलक वार्म मेंस मित्र लोग हित दिन मिलके के बोले फन वीक द हित इज दैट कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में अफगलोपन वुड्स कोड ओरेंज रहा द वार्स्क्यूइंग ड्यूट इन ईदर गेवाल tot in donderdag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd, mensen. Het raakt garmie heen, Europa mee, ouro aanploen bij. पानी पियो में खिलवाड़ न करिए दोस्तों हम भी यहाँ पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो है रुसलान भैया उक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एके उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहाँ उल्टा चीज हो गया भैया उक्रेन अब कितना ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफाल करे भैया राफी नार्द रही दागे तो ई दागे तो ऊ दागे है तो यहाँ पे बताए गए है ड्रियन 20 यूनी के बात है और बोले हैगा फर्स्किलन द रीक्यूज रुसलान में उस रुसलान में इस द फेर को फॉर ब्रांस of aan particulieren aan banden gelegd. Op die manier willen de lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen en brandstoftekorten. John Rusland is er deel dunia waar mee export kunt gaan. Een van de grootste exportlanden gaat telke op ohike des met teel naar hij bij jou. Teel bolle hebben komtie hij. Or bolle ze hebben hamster kregen omdat Russische Raffinaarde rijen gooien Oekraïne op een drone ze dagje ook het citraalde ze en Russische raffinaderijen worden al minder onder vuur geroemen Oekraïense leger ze en volgens Andriy Melik de permanente vertegenwoordiger Oekraïne bij de Verenigde Natie is 40% van het totale aantal raffinaderijen inmiddels beschadigd te bolen hierdoor Rusland raffinaderij capaciteit Hega flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen. To itra jabber bhaiya ap to Rusland apantil aprehi en meek na de ipawe he. Daarnaast worden ook aanvoer
routers van brandstof verstookt, jahan jahan stilwa samal le ja hai, ohu ke Oekraïne dage hai. Rusland bole hai Skir eiland, de Krim is de verkoop van brandstof daardoor volledig stilgesteld. Ik ook Krim mee, waar pe Rusland lele raha, aur telkere ohu in de ban hoige hai, aur ekar baare mein, ane de regio Vladimir ten oosten Moskou mee, krijgen de hulpdiensten vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldt de governor of Telegram. John en Miketi kare, ook is van Teel de Win. Ik ga ik weer naar jij de Zwam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bolle auto kan titelen je, regering bolle Poetin ge, bolle ga Teel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort, waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd en is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met biedt ook het te maken tellen jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Hega Russische regering ke oliemaatschappijen kebole om ervoor te zorgen die constante aanvoer van brandstof blijft. Bole Hega ondertussen Oekraïne door aanvalkere Russische tilpe orgaskele installatie waaronder raffinaderijen, bollehega fabrieken, jetrahega exportterminals gewoon door. Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen, om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel dat nou ook een Oekraïne banaan zeggen. Drone ook op een eigen fabriek. Ja, op de ultaatje joa hoewega. Raffinaderij daar. Sapke als hij dag. Aur Oekraïne plata kare hai. Oekraïne wil ki militaire druk jo nahega. Bole gepaard gaat met diplomatieke druk. Die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken oorlog. Bole hem ik had karela ki Moskou jo nahe Rusland ke oorlog wa ook het jij ben karek hamlo se. Herhaalde melding manda bij de VN. Gebeurt dat niet, dan overweegt Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front al ruim een jaar op tafel ligt. Op Rusland bole na mange he dabal e hem loke manier rahega ki hem druk karela ki oorlog wa ban kar Oekraïne anders gaan we door. De impact van de militaire druk op Oekraïne lijkt ook de Amerikaanse president Donald Trump niet te zijn ontgaan. Vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten. Voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht. To ye baat hai hamare janta कि अब सब चीजों उल्टा हुए लगल है Oekraïne juist aanval kreeg Rusland koeper. En Rusland mee teelol naar hege. Bhaiya bole landbouwers ke voorrang hai. En bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen. To hamare janta aur aage ko hum apna program ko lekar और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के बुड़की बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन बुड़की हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का बुड़की और बोलेगा बेतोन ब्रिज ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस हुआ हुए है और बोले बुड़की बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट gelden aparte verkeersmaatregelen. Of willen we zeggen dat Burkina willen gebruik maken buitense highwayke ook oorstwaastoke jahen jaike tego lamba route admi lukke mare ke pariga hamare janta. To abhi aap log ko aur aage ke baatcheet hum batayenge hamare janta कि और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिशन दो ड्रेंगन अप्रूव आन फीवी verplichtingen तो बोली जॉनी ये क्या होता है तो ये होता है
ki anti-korupsi wet Jonego hingga 13 April 2026 me dringen oproep kredit hingga ki jong publieke functionarissen hingga boleh hingga di op grond van de anti-korupsi wet verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen boleh jetra lantike admi he functionarissen boleh verplicht hingga anti-korupsi wet se boleh ego verklaring afleg kareke ki kahan pe tu ipaisoon pahile he IEV ke matle verklaring van inkomsten en vermogen boleh hingga de ACC wees erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloopt tot 16 augustus en pahile te lukken tegen ze hebben melden karde weke or ACC is het groot belang van de een verplichting, hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan een strafrechtelijke voldoening de ik er maar niet mee verplicht is van ke augustus en pahile sabke verklaar kareke ki kahan kahan pe or tu isab chijon pahile ba anti corruptie wet ke bare mein to ye to acha baat hai bhaiya ma sab kuch wahan bikao hai bhai je to ke paisa hai te ye vetwa bhi tor ho jaye ye to hamara Suriname ke vishwas na rahegi hamari janta ab ek aurat bhaiya nikeryanan ke baat hai nikeri mein dui barani mein jhagda bhail hai bhai jhagda bhail sanichar ke raat ke aur nasan raha auratiya बस अपन घर में अपने आगे लगा दीस ना अंदमिया भैया और अतिया लगा दीस और ये बातचीत हुए है शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो नीखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडक इन द फ्लमन एन फॉलीडक इन फ्लमन वास ऑपकनोमन और एक बार अपनी केरी के सिपाही गइल है और कई फने को सोल स्ट्रात है तो वहां पे ये चीज भइले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाए तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भइले हम का कडल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में किसी भाई अपन फुरतोई में ले गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतई कन इस्लाह तो फरक्लार देते ही कनु वो पुलिसी दैट एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइले बैरखन सूप वेख में बैरखन सूप वेख में एगो जबरदस्त रूफ भइल है जहां पे देर तक दैसन एसएडी सब लीगे को ब्राउन फीस पे भाए फरदख्तन दार में मकतन तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई सड़ तीन भैया दिन वे के बोले हैगा रेड लंग समेशन ऑटो हाथ स्कोडर सास ऑप्शन स्कोट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen die ik wat niet hierin op een auto leek jaat raam en ik was koude tas tangen raad je maar wat rapijsa raam en je teem ik een bromfiets inhaal karise en bromfiets wat ik inhaal karke ik er tas wat leek een peel bhagel bhaiya door de plotseling al actie schrok de automobiel is waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je bij ik kijk hoe je maar toe wat op hebt gehad, bij jou, tel het auto maar ze is op giet leest, dan kan hij nou toe wel een keer door hij leeg. Houd je ze bij maand, te, hamare Suriname, ke, hamare piare, piare, mita, mita, janta. Suriname ka news aur kuch aur deshon ka samachar
हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे अफ खसलोतन ब्रेक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो बड़ो किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी से गा बोले तेने से स्पूत ओफले बोले हो तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दो ब्रेक के गए ले हैं और बोले पुलिस पोस एवर अफ कर एल कार वान उड़क बैठ स्थान उजन बड़ो किया बन करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया श्री नाम में द्रिक द्रिक जब पकड़े है तो कहा बोले है गा बहुत कम विश्वास है कि ऊंची जीवन जरे है कि ना हमारी जनता पेंशन स्टेक 23 यूनि भाई पेंशन के बारे में यहां बतावे है लिख मिलियन नीदरलैंड्स फॉर हु Marielle Tweebeek, de oud president van DNB, live ontmaskerde. Bole, ja, pede, uitzending bij Laha en OPP. Bole, eindigde in een schandaal waar heel Nederland over praat. Klaas Notke, waarin mee, bole, 14 jaar lang president van de Nederlandse bank meer. Chowda Barisra, of bole, kandidaat ra, voorzitter ra, centrale banken, of gast ra. Twee weken mee go oma opbetaald gij he, bole het onderwerp ligt standaard inflatie, hypotheken en de toekomst van de Nederlandse financiën. Niemand had verwacht dat het gesprek zou ontarden in een ongekende confrontatie. Oh, ik heb bare me aplo altijd herhaling pedik bij je via i programma oké bare me. तो आप लोग को हम एक गीत सुनाने जाते हैं तो अभी हम आप लोग को पास फिर वापस आ जाएंगे एक गोल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है

और दोस्तों, जब जब तुमको देखा है रे छलिया, ये गीत आप लोग को हमने सुनाई दिया है, तो हम चलते हैं चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। अब देखो भैया, बेना लंग से एक आदमी काम उम करके आयल की का करके आयल है, और ओकर कोई पलवार जाने की शहर में मर गए रहा, तो बोले अब हम जाई डायरेक्ट का बोले मट्टिया में, अब मट्टी अट्टी में उजाई के अपन का बोले सब कारबार करके, अब बोले अब हम फ्राई हो गए, अब हम जाई तरी एगो कसिनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गैल है मजे में एगो कसिनो में, और ये कैसीनो में गैल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराह जीतल है, एगो खल बदराह जीतल है, और जब जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा, न तुलक तू जिले बाटे को 50 बरिस के आदमी बा, तो ये रमिया बड़ा मोह से गैल है, तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम, तो गैल एक दरी कुछ खा तो तरा भैया, तो हुआ भेटा नहीं एगो औरत के, और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा, जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भाई रमिया के फंसाई से, तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हो गया, रमिया दारू आ रही भी पी से भाए, तो अब ये के ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे, तुरंत समझ गए ना पलटन तिवारी वैक में एगो पेंशन है, और गैल है पेंशनवा में अदमिया टैक्सी शोफेर है, टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के, और वो औरतिया के ले गए एगो पेंशन में पलटन तिवारी वैक में, तब दोनों में भीतर रहा, तो ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गए वही पेंशन में सूद गए, वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाए भी रहा, बस ये औरतिया का करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा, एकर पजामा टांगल रहा भाई जेस पजामा रहा, और एगो तास रहा सब वही में ओकर का बोले है गई डेंसिटेट कार्त रहा, और खेल बद्राख रहा एगो बैगतास में, और डॉक्टर कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना के केती रा सब लेके छौड़ी पेल भागल भाई पेल भागल है, तो आदमी ये जगल है तरीके के पजामुए ना है भाई, पजामा मके जितना चीज सब इस सब चुरा ले गई औरतिया, तो इस गनमी गैल है नानिश करी से, तो स्कूतू गैल है पेंशनवा में पलटन तिवारी वैक में, तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसे ऐसे समय पे, तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही का नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है, तो कहते ही कन के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहाँ टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया समवेर करत रहा, और जाई के पकड़ी से गा का बोले हैगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कैंती के निंगवा से पाई से भैया, और बतावे एडमिनिस्ट्रेशन फन पेंशन ब्लीक दा द कैंती के फन टैक्सी वार मेरे फरदाख्तन है ट्रेन फलित ओवर इन को मेरे टैक्सी दी है ट्वीटल एर्दर ना रे पेंशन हट खबरा द स्पोर लेडे द पुलिस uiteindelijk naar de taxichauffeur tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden mensen ouro ouratiake ouro ik heb pijgen maar ik zon wanke ketia etia abena pijse ik er bare me li forno kisipahi 52-jarige taxichauffeur ouro 25-jarige commerciële sekswerker zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pensioen in de resort li forno, de twee zouden een man hebben besloten bestolen van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en ziranen. Toen je la tour pe geila bhaiya kabule gok geila gok kare na bij de kruising van la tourweg en Martin Luther's Kingweg mee, waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijke geldbedrag won mensen. तो भैया लतुर फतुर तो हम लोग न जाइला, वही बेनालान के जुगा रहा हुई, और वो गैले भैया तो कर संगे ई दशा हुआ पे भैल है,
यानी कि लातूर पे। अब देखो भैया मोंगो के दो सेंतन, मोंगो टापू के दो सेंटर भैया हक्को मिनी तेर दन बस लोग तक करे डायरेक्ट बारात में जाए के और बोले जब लेक हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के ये फ्राउ में स्टेलो बोले हम लोग काम पे ना जाबे और बोले देखा शाम लोग अंदर वे इस बोन बोले वर्ष क्यों करे हेगा बोले एग्जाम वे रक्षा में हिडन एंड खफार कॉम एंड एसन दैट द रेगुलेटिंग एंड मिनिस्ट्री अंडरवेज वेटेस्कपन एंड कुलती द ओपरस्टैंड वर्गुडिंग uiterlijk deze week betalen बोली हफ्ता हम लोग का पैसा ना दिए तो बोले हम लोग ना जाबे और समय पे लड़कन के एग्जाम के प्रयोग है और एग्जाम बोले ना हुई पर बहुत बड़का हानि है और बोले हेगा बंधन बोले आप स्प्रेक करे हेगा एक्सिमिना तोरन के दो सेंटर ने मंगो टापू के कि यूनी में 2000 volledig zouden zijn uitbetaald और बोले सही stellen echter dat deze afspraak niet is volledig is nagekomen और इच युवा जब जब ये रखेरेंगे वहाँ बैठे एनडीपी के भैया तब ये फ्राउ में स्टेलों स्टाकिंग करे है तब बोट वाल स्टाकिंग करे है तब बिस ऑनर स्टाकिंग करे है सब कोई अपन अपन पैसा ना पावे है तब सब के करे परे में से द बंधन फुरन आन तू और कि तो आओ फी ना उकाबर कोप क्राफ्ट फर्स्टर्किंग के पैसा ना पावे है दैट इज टॉक एरग में से में से मुझे अख्तर हुन एक हुन गेल्ड गान दी से गवर्क हैबन और वार फॉर से रेक्ट हैबन द बंधन फुरन आन दैट टॉट न्यू टू स्लेक्स Een deel van de gecommuniteerden in het betalingsproces is meegenomen. Op bolle Ekerbarem onderwijsbonden, bolle Volske BVL, also de HOS en VWP eisen dat uiterlijk 26 juni se pahile tjahin sepke paisa achterstallige betaling, paisa tjahin paanjaike en bolle hega docenten van Mongo Tapu ke baanchit he, jen Mongo me kaam kere Mongo Tapu me bhaiya, तो ये बात है कि स्टकिंग वहाँ के चीज हुआ और बोले फिर आवेले इतना गर्म में भैया कि सहारा के जो स्टोफ है सर नाम बुड़ल है और यूरोपा भर में गर्मी है सोचो भैया फो और बोले है फरवाक करे है ओवर वीकन वारम एंड ड्रूक बोले सहारा के शांति पुरुर के यहाँ आवे है मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 32-34 सेल्सियस द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर en hoge luchtvochtigheid zal het aanzienlijk warmer aanvoelen, mensen. ये बात है गर्मी पाकिस्तान उधर भैया अलार्म करी से अपरे के अलार्म करी से पाकिस्तान कौन ची खातीन बोले फरमुद बोले मुखलग बोले फिर द अख्तर इन फॉलखंड यार में बोले जबड़ बरखा पड़सीगा ओवर स्ट्रूमिंग हुई दे स्वामे बोले रंप बहेसिंग ऑथोरिटेटन अतवार के अलार्म करी से करवाने में कि का बोले पाकिस्तान में उतना बड़का ऊपर स्ट्रूमिंग हुई बोले बहुत बड़का ऋषि को है बोले केक बोले मैंने नाम कबीदन हुंसा एंड सर सर सर स्कार्डू ब bergachtige Gilid Baltistan in de provincie or bole worden als meest kwetsbaar beschouwd de Pakistan ke log jo wahan pe sabke regering alert kari se और बोले हेगा 2022 में इतना बड़का ओवरस्ट्रूमिंग भइल है जहाँ पे 1700 आदमी मरल हाँ एंड मेर दन देर तक मिलियन ऑन हाँ और बोले टेम्परेचर बतावे है इतना जबर चढ़ी 48.5 ग्रेड सेल्सियस हो जाएगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान बोले हाइस्फेस ऑनगेवर 13,000 ग्लेशियर्स है होस्ट आंतर बैठें द पोल खबीदन और बोले ऑनगेवर 7.1 मिलियन मेंसन वोनन इन द नाबे ऑनगेवर मेंसे और यहाँ पर बहुत बहुत लंबा चौड़ा निकल है तो जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ है आप जरूर अपने परिवार से वहाँ कॉन्टैक्ट करना द राम 2022 में बोले हैगा 11 मिलियार्ड डॉलर के हुआ बोले तू सेकेंगे रहा अन हेल्प ओम डोनर कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा इन 2023 वाज मेड यू 2005 एंड स्लेक ऑनगेवर 4.5 मिलियार्ड डॉलर के बातचीत इतना हुआ हुई भैया ये है पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ के बारे में आपको हम बताते हैं।
दोस्तों तालिबान तुलन जानो है, तालिबान एगो बड़का डेली खाद से लेके जा है ब्रिसल बेल्जियम में भैया एगो ओवरलैक है ए उसे बोले हैगा मेल्डन मेर्डन मीडिया डिस्टन यूरोपीय कमिशी बोले है तालिबान के बोले हैगा ऑफ आमतलक निफो और गस्प्रेक साल फोरन बोले कान है बसुक नोक नहीं बफेसखन बेल्जियम मांगते सो मार्क बकेंड करी से कि 5 eendaagse visa had afgeven voor een delegatie bole paantje roetjes op visum khali milal he ego delegatie leke bole awe ke au bole hega ane Brussel me bole commissie is al langer in gesprek Afghanistanse regime se bole mogelijke terugkeer van de asielzoekers doen asielzoekers hega bole us op ke terug jai ke bole een delegatie van dagelijke bestuur van de EU reizen daarvoor begin dit jaar ook af naar Afghanistan. Bolle hega Europese landen, bolle Europese parlementen zijn zeer kritisch op een bezoek van de vertegenwoordiger van de vrede regering van Europa parlementariër. Op bolle hega D66 noemt hem bezoek een klap in het gezicht en een nederlaag voor onderwaarden verantwoordelijke economisarissen. Op bolle ze namen het Taliban ke. Dus toe, maar ja, goed. Ze komen wel naar België, Brussel mee. तो हमारी जनता ये सब बात एक बयार्द औरत भैया सुरिनाम में ओके सब हंसे इवन से इवन तक या रखे और ओके ये फरसौरख कर तरह तुए इंदर तक या रख फरसौर कर सब के इस सब घर में रांत के कोलो निस्तन वेख में और रूफ ओवर फाल भैले दोनों के छोड़ी पिस्तौल दिखाई के और सेवन से इवन तक या रख बयार्द और ओके फरसौर कर के सब लूट के चल गए भैया यहां बताए दे criminelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en 2 paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen in onbekende richting. Toen zelf bejaarde kesap gewoon tjoor na. Tjoorde bija. En dat is een Suriname mensen waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. Hier hega hamelijke hoofdwijk door haar. Oh, hard hem demonstreren kan het raar. Curtis hoofdwijk bolle hega. Oh, u op een pro met ze mee niet kerge. Dus toe, aapke bataye he. Ab ja, bolle actuele maatschappelijke en politieke situatie bolle he. Bolle telwa joon hamelijke nikeriga ikar matem na ki deswa. Hamelijke probleem met ze nikar dee. Bolle olieinkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bolle hega een belangrijk onderdeel van het gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke bolle game changer voor de Surinaamse economie, maar hoofdweg waarschuwt voor te veel en effort niet. Dat is een moeilijk woord gebruiker in Nikar. John, hamare janta bhi na samaj paaye waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kun zijn. Oh, is het bij poetje een moeilijke taal? Dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken, mensen. Maar dat is weer iets anders. Van de Xeroxweek erbare mee bolle, ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal continu beleid straatarm blijven. Bolle hamlo straatarm rabe, de ko Guyana mutra tel nikre, maar toch gewoon pe garib ta, je bent tak he, hamari janta. Or is op Suriname ke admilon agore he, ki kap telwa nikre, natuurlijk. U sab soche he, ke chijwa mooi hui, ab de ko bhaiya, Saint Laurent aplon jane, albinam to, fair boat habara hove he, or hua ke nigo फिर बोट 5 सितंबर में शुरू करी मोई से चले के और बोले हैगा जोन हबड़ा हुए है साउथ लॉरेंस ने अने बोले हैगा अल्बिना से फलोप कंपन मैंने एरेस्ट कब पैर की और एको हैडो का फिर बोट हैगा लाका ब्रिले 18 यूनिम बैठन गब्रेक हुई गये है आज को फॉलो फन एंड इफेक्ट ऑन द हिड्रोलिक्स पंप तेलक तगलेकरटेन हैबिट द सुरिनाम्स हैवन ऑथोरिटी एंड फास्ट gesteld dat de drijvende aanlegsteker aan de zijde

ना तो करो की तलाश है मनरी अशवोश्री का, ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत है। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता। तो सबके लिए एक शेर हम यहाँ से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहाँ से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोंगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बनमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफीर का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेगा भैया, हड कड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौ के रसराज की कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों, और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिके लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई जोर से ना बोलिए, नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तो बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए धीरे से बोलिए।

ससुर धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए हैं उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नीखती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताएं थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सज्जनरी और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताई गई है कि झूठ मत बोलो, अगर जो झूठ बोलेंगे भैया तो कौआ काटेंगे। और मायती मुकेश इस गीत को आपको सुनाई है, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, फनी खती होंद इनसेशन सेस्ट। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं। कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों। कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती, हम चाहते हैं उनको अपना बनाना, पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती, वो हमें चाहते हैं ना भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं, और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करें। दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले ये ओकर ऐसा गाना है, ये ओकर ऐसा गाना है, लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखतिन अख्तन जीवन तक का। और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं, और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं, और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो अडमिया गाय से, वो अडमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों। और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर। वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है। और ये मूवी के नाम फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली। और ये फिल्म बना है निहति होंडक में। और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन की डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शख्स जिसका, छोड़ गई वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद दिखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास, निखती होंदत एन एन तख्त का ये गीत है जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

छोड़ तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी, तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हाँ प्रेम बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

बोल मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है। आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आज दिया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 105.93 मेगा हर्ट्ज पर ऑफ नहीं कनाल 8A दिया बी प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल की ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे जो नहीं शस्तक का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए हैं। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गेवेल्दिग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरी और आपको हम यहां से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारे है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्मा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जमा ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी खबरोगन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं दोस्तों, प्यार का सागर फनी कति होंदत एन एनन सस्तख। आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूं, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी और राज्य।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना है तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंदक का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रोंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं, बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं। और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त, जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है, तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैत मुकेश के बाद एक बार फिर मैत मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

हमारा फसाना मिट नहीं सकेगा ज़माना। और अभिजीत जी और अलका जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत जो हमने पेश की और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं? जी हाँ, और प्रोग्राम में हमने रखे हैं देखूं तो बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल। चलो सुनते हैं। हाँ

वाह क्या गीत है। हम आपको सुनाए हैं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो हैं, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिलकर आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि यही दोनों ने फिल्म क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने, या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फावनी हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
2: नागिन से बल खा के।
1: हाय हाय हाय हाय हाय।

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: Good room. Devi kamar pe to ye kamar band ho ki salon is.
1: अच्छा तो ये वाकई आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले भैया शानदार गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा ओ यारा, आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की चास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल, फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम एक प्यार करते है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेकन तीन सस्तख

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।

अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हमने पेश किया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक ग्राम। सुनने वाले कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं, और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,

अभी आप सुन रहे थे बासी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाए सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले,

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे अभी आप सुन रहे थे। झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डाजी, क्या नज़ारे।

झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं क्या नज़ारे, किशोरा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोरा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: ये तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज़ में। बुरे भी हम भले भी हम, द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम
2: हम

उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, उम्र के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

ये सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाला है फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा, मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

जो तू मेरा हमदर्द है, अभी आप सुन रहे थे सुनने वाले फ्रॉम द मूवी विलेन से हमने पेश किए है, और ये गीत खासकर कुमांग किए थे आयशा जी, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। अपना बना ले फ्रॉम द मूवी भेड़िया से आप सुनेंगे सुनने वालों।

भेड़िया है फिल्म का नाम सुनने वालों, और अभी आप सुन रहे थे अपना बना ले पिया, फिर भी मैं तुमको चाहूंगी फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड।

हाफ गर्लफ्रेंड है फिल्म करम, इसी फिल्म से हमने पेश किए है मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। गदर टू इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चल तेरे इश्क में।

गदर तो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, तुम क्या मिले।

क्या मिले अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। शहजादा है फिल्म कराम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं छेड़खानियां।

0: फ्रॉम द मूवी शहजादा से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ, और छेड़खानियाँ के बाद फ्रॉम द मूवी गदर 2 से आप सुनेंगे मैं निकला गरी लेके।
1: और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर टू। जुग जुग जियो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते दुपट्टा।

फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो से भी आप सुन रहे थे दुपट्टा, और दुपट्टा के बाद हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका फ्रॉम द मूवी तुम झूठी मैं मक्कार।

अभी आप सुन रहे थे शो मी द ठुमका, और ठुमका के बाद हम बढ़ चलते हैं झुमका की तरफ। वो झुमका

What, Chunka? From the movie Rocky और रानी की प्रेम कहानी, इसी फिल्म से हमने पेश की है What, Chunka? तुम झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं सुनने वालों, मैंने पी रखी है।

फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश की है मैंने पी रखी है। टाइगर 3 है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लेकिन

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice day and take care of yourself. Till next time.

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के इस सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बुलाइश्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। एनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सोसोलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या इवेंट और खानिसात और जो आप ऑर्गेनाइज करते हो उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट अलाइन कराना। यारो तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डिवाइस सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। यारो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेनेंस कंटोर यूरो ऑफ नूर सेवन तक द्रीफें सस्तक तो इन टूनिक सेवन फिर तक, या तो आप तार करें ऑफ नूर सेवन तक द्री ट्वेन सस्तक तो इन टूनिक सेवन सेवन तक पर। जो भी रेडियो का काम हो देन कन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फिल्म टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बंटू नो खेल लिट फन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारित निवेदन और विनती किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, क्योंकि आप अगर है तो हम भी है ना। वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं आप सभी को एक ही दम फिर प्रोग्राम की तरफ, और हमारे कुछ सरनाम के नगमे यानी सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। और अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड, किरण केदार जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में। ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में की बड़ी दूर से आए हैं।

Shabba shabba shia, Mr. KK from Holland, Kiran Kedar, together with King Selecta, badi dur se aaye hai, Selecta Beats. अगला बयान साजन मोरे सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को नीलम एफ टी सत्यम माता दिन मिलके सुनाते हैं म्यूजिक फॉर्मासी फ्री स्टाइल के सांच पर.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को साजन मोरे नीलम और सत्यम माता दीन म्यूजिक फॉर्मेशन फ्री स्टाइल के संगीत पर। अगला बयान मशहूर कलाकार हमारे हॉलैंडीज का किंग सेलेक्टा के ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सामने मैं पेश करने वाला हूँ। मिलके सुनते हैं सोनिए मैशअप फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन सेलेक्टा बीट्स किंग सेलेक्टा सेलेक्टा बीट्स शो बैंड के ब्यूटीफुल साउंड और संगीत पर। मिलके सुनते हैं स्पेशल
1: सेलेक्टा एंजॉय बेस कॉन्सर्ट सेलेक्टा

शाबाश मशहूर गायक और महान कलाकार हमारे ऑल इंडीज का किंग सेलेक्टा विथ द म्यूजिक फॉर्मेसी सेलेक्टा विथ शो बैंड के ब्यूटीफुल संगीत पर। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला फ्रॉम पाकिस्तान एंड हॉलैंड उस्ताद सागर मलिक भी कुछ सुनाने वाला है आप सभी को। मिलके सुनते हैं वे कमलिया।

क्या बात है, अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को पाकिस्तान और हॉलैंड देश का मशहूर गायक सागर मलिक, संगीतकार सेलेक्ट बीट्स के साज पर। अगला बयान एक और महान गायक हमारे सूरीनाम देश का मिस्टर के कविश कलका का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग फ्रॉम द सूरी पॉप 2024। यूनांगामी ऑलराउंडर माएस्ट्रो कविश कलका।

जन्नत मिली है। नौजवान कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर, द वन एंड द ओनली सरित दत्ता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, और इस बार लाते हैं द क्वीन ऑफ मेलोडी जमाने का श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। येमी येमी साथ दिया है मशहूर रैपर टाइक एंड राणा सोताल, जो मिलके ये अति सुंदर बयान को लिखे हैं श्रेया जी के लिए। येमी येमी, लेट्स येमी येमी।

येमी येमी येमी ब्यूटीफुल सॉन्ग श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया इस जमाने का क्वीन ऑफ मेलोडी द ग्रेट श्रेया घोषाल जी और साथ दे रहा था टाइक द ग्रेट रैपर। कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुन रहे हैं। अगला बयान तुम बादल बन जाना दो मशहूर गाने वाले हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उभरते हुए कलाकार सृष्टि भंडारी और हरमान नजीम मिलकर सुनाते हैं विवेक कर के साज पर सौंदर्या सुराभी का लिखा हुआ ये सुंदर बयान।

तुम बदल जाना तुम। ये अति सुंदर बयान दो नए नए आवाजें हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, सृष्टि भंडारी और हरमान नजीम मिलके सुनाया आप सभी को। विवेक कर अल्फाजे थे साउंड दरिया सुराबी और संगीतकार विवेक कर के साँच पर। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आप सुनेंगे ओ मेरे हम नवा। द सॉन्ग इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय संजीव चतुर्वेदी।

सुन दर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया ओ मेरे हम नवा। इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, जो लिखा है और कंपोज किया है संजीव चतुर्वेदी। समय पे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और फॉलो करते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, आप भी जाइए, कुछ खाइए या कुछ पीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। तो इसी तरह से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं यारो, और यही आशा उम्मीद है कि हम लोगों का पेश किया हुआ जो कार्यक्रम होते हैं ना, ज़रूर आप सभी को पसंद आते होंगे। यही तो हम लोग सोच सोच कर आते हैं आप सभी के खिदमत में।

0: डिग्रेड किशोरदा के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आज श्रोताओं ने सुना। ऐड फिल्म एक मुट्ठी आसमान 1973 कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। काफी दिनों से स्पेशल चल रहा है महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी। तो कुछ यादें मेमोरीज आप सुनेंगे खास करके क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, और कुछ बातें भी खुद मदन मोहन साहब जी ने आप सभी को सुनाने वाला है। मिलके सुनते हैं मेमोरीज ऑफ लता जी एंड मदन मोहन।
1: मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुनीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
2: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनके

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया।

Nere bate kuch memories aap shrotaon ne suna melody queen lata ji ke madhur awaaz mein aur kuch baatein khud madan mohan ji ne aap shrotaon ko sunaya. Ek bayan jo main aap shrotaon ko sunane wala hu aur wo khaas karke mere dil ke bahut kareeb hai aur sunane wala hai aap sabhi ko ek baar phir. लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की हम चल रहे थे वो चल रहे थे ऐड फिल्म दुनिया ना माने 1959 महान लेखक राजेंद्र कृष्ण जी के अल्फाजे संगीत है महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी का मिल्क सुनते हैं स्पेशल

जरूर सीखेंगे ना। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आप सुनेंगे ये महान संगीतकार मदन मोहन जी का जो स्पेशल आप सुन रहे हैं, कुछ बातें अनसुनी बातें। मदन मोहन जी का एक छोटा बायोग्राफी, खास करके दी रिनाउंड गजल कंपोजर।

एक फिल्म स्टूडियो के मालिक का बेटा, एक फौजी जिसने जंग के मैदान में गोलियां चलाई हों, वो बना लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। पूरा नाम मदन मोहन कोहली। मदन जी का जन्म 25 जून सन 1924 बगदाद में हुआ, जहां पर इनके पिता राय बहादुर चुनीलाल साहब इराकी पुलिस के साथ काम करते थे। बचपन से ही मदन जी को संगीत का शौक था और वो अपने घर में रखे ग्रामोफोन पर घंटों संगीत सुना करते थे।

जैसे ही इराक ने ब्रिटिश राज से आजादी पाई तो राय बहादुर चुनीलाल अपने परिवार के साथ वापस भारत आ गए और मुंबई में मदन मोहन साहब के पिता राय बहादुर चुनीलाल बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में पार्टनर बन गए। ऐसा माना जाता है मदन मोहन साहब को संगीत की प्रेरणा मिली उनकी माताजी से, जो खुद अच्छा लिखती भी थीं। और सन 1943 में अपने पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली, पर उनका दिल संगीत से जुड़ा हुआ था और पहला मौका मिलते ही वो फौज को छोड़कर चले आए संगीत की दुनिया में और उन्होंने लखनऊ का ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, जहां पर उनके साथ थे उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर। साथ ही उनकी दोस्ती हुई मशहूर व मारूफ गायक तलत महमूद से भी।

0: कुछ समय के लिए मदन मोहन साहब ने एसडी बर्मन और श्याम सुंदर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। मदन मोहन साहब के लिए लता मंगेशकर ने जितने हिट गाने गाए हैं उतने किसी और सिंगर ने नहीं। ये किस्सा भी मशहूर है कि कैसे लता जी और मदन मोहन साहब के बीच भाई बहन का रिश्ता पनपा।
1: पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया।
0: और मदन जी की तकरीबन हर फिल्म में लता मंगेशकर ने गाने गाए। इनकी पहली फिल्म थी सन 1950 की आंखें, उसके बाद जहां आरा, दुल्हन एक रात की और एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं।

मदन मोहन साहब ने मोहम्मद रफी साहब से भी खूब गाने गवाए और वो सभी गाने हिट भी रहे। ऐसा भी माना जाता रहा कि इन्होंने किशोर कुमार की आवाज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिल्म मन मौजी में नजर आता है कि किशोर कुमार ने भी मदन जी के लिए क्या खूब गाने गाए हैं।

0: भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन खूब चमका है।
1: मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल भर भर भर भर।
0: ऐसा माना जाता रहा कि मदन मोहन साहब की जो धुनें हैं वो लता जी के लिए ज्यादा सूट करती हैं, पर इस बात को इन्होंने गलत साबित किया जब फिल्म देख कबीरा रोए में इन्होंने मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल किया। यूं तो मदन मोहन साहब का संगीत परवान चढ़ रहा था, पर कभी भी उन्हें किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया और इस बात का उन्हें खासा दुख था, खास तौर पे जब उनकी फिल्म वो कौन थी आई।
2: ये

अगर हम गीतकारों की बात करें तो मदन जी के साथ सबसे ज्यादा काम किया है राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी साहब और राजेंद्र किशन जी ने। साहिल लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी उनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है, पर राजा मेहदी अली खान, कैफी आजमी और राजेंद्र किशन के साथ इनके गाने ज्यादा हिट रहे।

ये वो वक्त भी था जब फिल्म इंडस्ट्री की त्रिमूर्ति अपने अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स चुन चुकी थी। राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन जुड़ चुके थे, देवानंद के साथ एसडी बर्मन और दिलीप कुमार नौशाद साहब का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे दौर में मदन मोहन साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया।

मदन मोहन, सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे, पर इनके बीच में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि राज कपूर अगर फिल्म बनाएंगे तो संगीत मदन मोहन से लेंगे। दोस्ती जरूर कायम रही, पर इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया।

पर मदन मोहन साहब इस बात से खफा थे कि उन्हें अवार्ड्स नहीं दिए जाते। सन 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मदन जी अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे और शराब की आदत ने भी उनकी तबीयत बहुत खराब कर दी थी और सन 1975 14 जुलाई को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए।

पर एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमेशा अमर रहता है, और ये बात मदन मोहन साहब के संगीत ने साबित की जब उनके बेटे संजीव कोहली ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा के लिए मदन मोहन साहब की कुछ खास धुनें ढूंढ निकाली। और अच्छी बात ये रही कि उन गानों में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़

मदन मोहन साहब का हर एक गाना ये बताता है कि ये मदन जी का अमर स्टाइल है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा।

0: बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप।
1: क्या बात है, हम किपफेल फंत क्रय हमारे भी प्रिय सुनने वालों, ऐसा संगीतकार बार बार जन्म नहीं लेता। हमारे भी प्रिय साथियों, यही तक था आज का ये स्पेशल महान संगीतकार ग्रेट मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत प्लीज।

तुझू भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 07-3562-2704 और स्टूडियो का तार का नंबर 07-3062-2077। खास फरमाइशें हो या तो जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट हो या तो शोज वगैरह, उसके बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है हम लोग आप मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप अजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलत कांतोर यूरोप 07-3562-2704। जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रेकलाम बनाते रहना यारो, कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। एनतिलक लव यू ऑल। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए आवाजों की तरफ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, और अति सुंदर बयान कॉफर्ड सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं न्यू स्टाइल पर इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट सूरज जोगन। सूरज जगन के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ही इज ऑल्सो अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ग्रेट सिंगर। तो मिलकर सुनते हैं दम मारो दम ऑफ सूरज जगन स्टाइल। यस yes.

इन अ न्यू यश सूरज जगन के स्टाइल में ये अति सुंदर एवरग्रीन सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना आज के ये हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है। अगला बयान एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफी दिनों बाद कुछ निकाला है द ग्रेट कैलाश खैर के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान लिखा है महान लेखक इस जमाने का ग्रेट कुमार जी और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर मीत ब्रॉस अंजान। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे निशान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Great song, Mary Nisha, from the movie Oh My God. महान गायक द ग्रेट कैलाश खेर के मधुर आवाज में महान लेखक कुमार का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय मीत ब्रॉस अंजान। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है, रात्रि का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुनाने को जा रहे एक बार फिर ये उभरता हुआ नौजवान कलाकार जो टॉप टॉप सॉन्ग्स अपने ही स्टाइल में एक नया कुर्ता पहरा देता है, तो मिलके सुनते हैं आवारा हूं को क्या धुन बना दिया ये द ग्रेट सूरज जगन।

0: Waarom?
1: Amazon shopping app
0: in a new yasha en gestoken door Suraj Jagan, mahan gayak hamare Bollywood film industry ka is zamane ka. अगला बयान एक अति सुंदर बयान है नौजवान कलाकारा स्नेहा भट्टाचार्या जो नए नए अपने कदम रख चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लाइव रिकॉर्डिंग अति सुंदर बयान पहली जिंदगानी मिलके सुनते हैं

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और वो भी स्नेहा भट्टाचार्या के मधुर आवाज में। फाइनलिस्ट ये थी हमारे सारे गामा पा कॉन्टेस्ट 2023 में, एंड से एंडेड ऑफ द फाइव्थ प्लाट्स, मार व्हाट एन स्टेम सेग। अगला बयान इसी तरह के कुछ नए नए आवाजें, नए नए कलाकार हैं आप सुन रहे हैं, सुनील शेट्टी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान एक बार फिर सुनन को जा रहे हैं आप सभी को। सूरज जगन, नेहा कपूर और हरुण गैवन ने मिलकर ब्यूटीफुल सॉन्ग अनदर जैकेट।

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अति सुंदर कंपोजिंग बाय ये अति ब्यूटीफुल और जबरदस्त टैलेंटेड गायक है ये हमारा, जो अभी आप सुना श्री सूरज जगन जी के मधुर आवाज में। एंड म्यूजिक रेयरेंज बाय की सी लॉय श्री, क्या बात है, वाह। तो मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है कुछ ज्ञान के बातें अब हो जाए। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के विद्वानों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने फ्री हेट आजादी छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं। कुछ जीवित है और कुछ भी भगवान को प्यारे हो गए, और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ यही आशा उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग इन बातों से जरूर प्राप्त करेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री क्लाउड ऑफलाइन, है वसम फ्रांस क्राइफर आइटखीफर एंड डिक्टर ओक पी एस वन एफन ऑफ सीन लीफ्ट वन 1901 तक 1992। और क्लाउड ऑफलाइन ने कहा है आजादी के बारे में यारों की, द मेंस डी फ्रीहेट ऑप एस्ट डेंट आन गेलुक। आगे में कहा श्री थॉमस मन, है वॉज एन डच ऑथर क्रिटिकस एंड नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर 1929 एंड लीफ्ट वन 1875 तक 1955। और थॉमस मन ने कहा है आजादी छुटकारा फ्रीहेट के बारे में यारों की, डायरेक्ट गकॉन्फ्रोंटेड मेट फनाटिज्म इज फ्रीहेट डी आउट पूरे गुडहेड एंड ह्यूमने स्केप्सिस नीट मेर आन सिखसेल्फ गेलोफ्ड टेन ओंडरगांग गेडूम्ड। एन मोंड वोल मार हेल गुड। आगे में कहा है श्री बापू जी, हम लोगों का अपना महात्मा गांधी जी, है वॉज एन इंडियाज पोलिटिकस एडवोकेट यूरिस्ट एंड लीव्ड वन 1869 तक 1948। हम लोगों का बापू महात्मा गांधी जी ने कहा है, एक बसित अब्सोल्यूट नीट्स एंड सी दैट एक ऑप नाट दी बिसलेसिंग हैव गनोमन वेट द वेरल्ड फन मई एरफारिंग मेट फीर दिंगन फरेक्ट Leven, macht, vrijheid en vreugde. Als gij die dingen wilt bezitten, mijn vriend, dan moet ook gij die weg gaan. Ook een hele goede hoor. Hats off to Bapuji. Aage me kaha ek aur mahaan padhe likhe insaan hamare Bharat bhoomi ka, the great Krishnamurti ji, in India geboren spiritueel leraar, leefde van 1895 tot 1986. Al Krishnamurti ji ne kaha hai azadi vrijheid ke bare mein aro ki, als je alle uitvluchten alle hoop opgeeft, niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijken. Te diep, maar heel goed. Eigenlijk had Sri Johann Wolfgang von Goethe. Hij was een Duits schrijver en dichter, leefde van 1749 tot 1832. Oh, Johann Wolfgang von Goethe, nee, kaha hij azadi chutkara ke bare mein aruki. Men kan in echte vrijheid leven en toch niet ongebonden zijn. आगे में कहा है बहुत ही पुराने जमाने का आदमी सेनेका, है वॉज एन रोमेंस

हंस के मिलना था उसकी आदत, मगर मशहूर गाने वाली इस जमाने का उभरती हुई कलाकारा निशिता शर्मा जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुना। म्यूजिक कंपोज बाय अमजद नदीम अमीर और अति सुंदर बयान को लिखा है अजीम शिराजी। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आप लोग एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और ही बहुत ही मशहूर गायक इस जमाने का, जो कुछ पुराने नगमे को नए धुन में और नए रिदम के साथ सजा देता है। रंग बरसे सूरज जगन ने इस तरह से सजाया है।

0: क्या शॉपिंग ऐप के अंदर मिनी
1: क्या बात है।
0: देखिए मेरी नई सी,
1: ये सुनील शेट्टी की आवाज है जो स्पॉन्सर है ये महान गायक सूरज जगन का। तो उन्हीं की आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। इन अंदर सूरत रेतम यश तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जस, जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, आप सभी को जरूर कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 9 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर, और उसके बाद कुछ पुराने नगमे आप सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए। तो अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है फाउन हिंदुस्तान एडू का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो अमित कुमार जी, और उसके बाद बड़का भैया दिलीप रामाधीन जी, और आगे के रात्रि का कार्यक्रम जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो बुधवार रात्रि 9 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा सिर्फ पुराने नगमे लेकर। तो मुझे आप सभी आज्ञा दे, अलविदा कहता हूँ आप सभी को, और मिलते हैं अगर जिंदगी ने साथ दिया बुधवार को। जाते जाते कुछ गुनगुना देता हूँ हमेशा की तरह ना, तो आज है ये, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

है सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. सोसो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग एंड टिल वी मेट अगेन आवाज के जरिए.

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिलिक उक्त बिलोस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, और जहां पर भी हो जी साल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड बडंग बॉयज एंड गर्ल्स जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से राम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो खास फरमाइश हो जरूरी खबरें हो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजेटर हो और मन हो या तो ऑर्गा वुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफ़ायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल तेडेंस कंटोर यूरो ऑफ 070-213-6598 of op 070-365-2247. जो भी रेडियो का काम हो denk aan फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzar is bent in de binnen kia ja raha hai kia bhi jel si jel Fahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banaye aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Sabhi jankari uske bare mein aap tar kare. Op 070-365-2247 ya to op 070-213-6598. तो आप भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार चर्चा करते रहना हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है। वादा के मुताबिक एक हिदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर और जिसे मैं आप सभी को कह चुका था अब आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच गए थे फिल्म जहूदी तक बीते हुए दिनों में जो रिलीज किया गया था 1985 तक में और इस मूवी में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाय हुस्न और मलकाय संगीत वंस कौन ओक हेल खुद सिंह एंड शेर शायरी में बहुत ही आगे थी मीना कुमारी जी उनके ढेर शेर्स के गाने बने और खुद अपने शेर्स वो गाई है आप ज़रूर कभी सुनिए यूट्यूब पे तो ढेर सारे इनके गाने भी आपको मिलेंगे। संगीतकार शंकर जय किशन के साज पर आप सुनेंगे भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी के मधुर आवाज में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाहुदी मेरी जा मेरी जान शैलेंद्र के अल्फाज़े।

Meridian, Meridian, beautiful song from the movie Jahoudi 1958. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke madhur awaz mein koorich ke saath. Music by Shankar Jai Kishan and the song is written by Shailendra. Ek aakhri bayan from the film Jahoudi aap sunenge. और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुरकवाचार्य किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी शंकर जय किशन की सांच पर शैलेंद्र के अल्फाजे कोरस के साथ ये दुनिया है हमारी.

करना हो तो सजदा कर दीवारों का, ये दुनिया

ये दुनिया हमारी है, अति सुंदर बयान। और साथ ही साथ आखिरी बयान फ्रॉम द मूवी जाहुदी 1958, शंकर जय किशन के साथ पर शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। और सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह रवि साहब जी कोरस के साथ। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी गाने फिल्म जहूदी का आप सुन चुके, अब लेकर चले हैं आप सभी को हम, चल देखते हैं एक तो एक मूवी जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1958 और जो काफ़ी मशहूर हुआ, खूब चला, फिल्म मधुमति। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री विजयंती माला जी के साथ, साथ ही साथ प्राण भी इस फिल्म में अपना अदाकारी को पेश किया है। संगीतकार महान संगीतकार उस जमाने का द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सहील चौधरी के साथ है, शैलेंद्र के अल्फाज है। तो फिल्म मधुमति में से कुछ नगमे आप सुनेंगे। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में, ये अति सुंदर सुपरहिट सॉन्ग सलील चौधरी के साज और संगीत पर शैलेंद्र का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग की सुहाना सफर और ये मौसम।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रात।

मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होना चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर प्रोग्राम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्वपन विज्ञान।

आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी राशि, लगन तथा स्वप्न के बारे में। तो हम पहले बढ़ते हैं लगन के बारे में। मनुष्य प्रायः पहले चार सुखों के बारे में ही स्वप्न देखता है, क्योंकि वह इन्हें कर्मानुसार पसंद करता है। ये चार सुख इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हम सब देखते हैं कि किस लगन वालों के लिए किस किस ग्रहों के योग से यह सभी स्वप्न साकार होते हैं। पहला है मेष लगन। इस लगन के जातकों के चारों सपने इस प्रकार साकार होते हैं। यदि लग्नेश मंगल बलवान शुभ ग्रहों के द्वारा देखा गया हो या शुभ ग्रह लगन में हो तो स्वास्थ्य दीर्घ आयु का सपना साकार होता है। लक्ष्मी साकार स्वप्न के लिए चंद्र केंद्र त्रिकोण स्थिति के 2 व 12 के स्थान पर गुरु शुक्र हो तो जातक पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हो जाती है। केम ध्रुव प्रयोग हो या लगन 2/8 पाप ग्रह हो तो लक्ष्मी का स्वप्न अधूरा रह जाता है।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दूसरा है वृष लगन। इस लगन वालों के चारों स्वप्न इस प्रकार साकार होते हैं। स्वास्थ्य दीर्घ आयु का स्वप्न तब साकार होता है जब लग्नेश शुक्र बलवान हो, शुभ ग्रह देख

बुध गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त होने या निर्मल होने पर यह स्वप्न शून्य मात्र रह जाते हैं। आर्थिक विषय का स्वप्न तब साकार होता है जब धनेश चंद्र लाभेश मंगल बलवान को शुभ ग्रह देखते हैं। चंद्र बलवान के दोनों और शुभ ग्रह हो, इसके विपरीत होने पर निराधार हो जाएगा। सुखी ग्रह जीवन का सपना तभी साकार हो पाएगा जबकि सप्तमेश गुरु बलवान हो। गुरु केंद्राधिपति दोष होने से स्वप्न बिगड़ जाता है। संतान सुख का सपना तभी साकार होगा जब पंचमेश शुक्र बलवान हो। इसके प्रतिकूल होने पर जातक संतान की ओर से दुखी रहेगा।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन स्वास्थ्य दीर्घायु का सपना तब साकार होगा जब लग्नेश चंद्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या वहाँ स्थित हो। निर्बल होने पर या केंद्र त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना होने पर स्वप्न निराधार हो जाएगा। लक्ष्मी स्वप्न कर्क लगन वालों का जब साकार होता है तब चंद्र बलवान के दोनों ओर शुभ ग्रह धन लाभ भाव में स्थित हो या इन स्थानों को देख रहे हो। निर्बल रहने पर स्वप्न अधूरा रहकर जीवन को अशांत कर देता है। स्त्री स्वप्न साकार करने के लिए शांति बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह बलवान सातवें भाव में स्थित हो या उस स्थान को देख रहे हो, यदि सातवां भाव निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो, शांति निर्बल हो, तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। संतान स्वपन सुखी होने के लिए पांचवां स्थान या पंचमेश बलवान हो, मंगल बलवान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इन योगों के निर्बल होने पर स्वपन भी निर्बल हो जाएगा।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि में सिंह लगन कैसे स्वप्न साकार करते हैं। सिंह लगन, इनको स्वास्थ्य शरीर का सपना साकार होने के लिए लगनेश सूर्य बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह लगन में हो या इनको देख रहे हो, इसके विपरीत शरीर में कष्ट होता है। अर्थ संबंध में बुध को शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह धन भाव में स्थित हो या उन्हें देख रहे हो तो लक्ष्मी स्वप्न साकार हो जाता है, अन्यथा दरिद्र रहते हैं। इस लगन वालों को का सुलक्षणा स्त्री का स्वप्न तभी साकार होता है जब शनि बलवान हो, इसके विपरीत यह सपना अधूरा रह जाता है। योग्य संतान का चौथा स्वप्न फलीभूत होने के लिए पंचमेश बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान पर बैठे हो, अन्यथा यह स्वप्न व्यर्थ हो जाता है।

सुनने वालों, अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, यानी कन्या लगन। सुखी गृह जीवन के लिए बलवान गुरु केंद्राधिपति दोष रहित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या सातवें बलवान ग्रह हो या इस प्रकार इनकी दृष्टि हो। मनुष्य संतान सुख तभी प्राप्त करेगा जब बलवान शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पांचवें बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या इनकी दृष्टि हो। इसके विपरीत जातक संतान की ओर से दुखी ही रहता है।

सुनने वालों, सपन तो हम सब देखते हैं और सपनों का कुछ अर्थ भी होता है और उनके कुछ फल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ सपन और उनके फल, यानी जो लोग हम सपना देखते हैं उनके फल क्या निकलता है। जैसे अनाज भरना, तो उसका फल निकलता है धन लाभ। अगर सपने में हम अनाज देखते हैं तो उससे हमें धन का लाभ होता है। मरण होना, अगर हम मरने का सपना देखते हैं तो हमारी दीर्घायु यानी हमारी आयु लंबी होती है। आंधी देखना, यानी सपने में अगर आंधी तूफान देखते हैं तो उसका मतलब है संकट चिंता।

सुनने वालों, हम जैसे सपने देखते हैं और सपनों का मतलब भी होता है, और अभी मैंने आप सबको बताया कि उसके फल भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इमारत देखना। सपने में हम लोग इमारत का मतलब कि कोई बिल्डिंग देखे या कोई बड़ा मकान देखे तो उसका फल हमें मिलता है लाभ। तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे का लाभ हो, और भी किसी वस्तु का लाभ मिल सकता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम सपने में ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसका मान हानि या हमें हानि होती है। कुत्ते का काटना, अगर सपने में हमें कुत्ता काटता है तो उसका फल है शत्रु भय, कि हमें अपने शत्रु से भय है या किसी भी चीज़ से हम डर सकते हैं।

सुनने वालों, अगर हम सपने नाव देखते हैं यानी बोट को देखते हैं तो परेशानी फल मिलता है कि उससे हमें परेशानी कोई भी मिल सकती है। चित्र देखना कि सपने में हम किसी भी तरह का चित्र देखें तो उससे हमें राज्य लाभ कि हमें लाभ की प्राप्ति होती है। जहान देखना उससे हमें होता है स्त्री क्लेश

सुनने वालों, अगर हम सपने में जवाहरात, हीरे जवाहरात देखते हैं तो कार्य सफल, तो उसका फल मिलता है कि हमारे जो भी कार्य हैं सब सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

सपने में हम सुनने वालों, अगर तख्त पर बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है इज्जत पाना। तख्त मीन्स किसी ऊंचाई पर बैठे हैं या किसी सिंहासन पर बैठे हैं या ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें इज्जत मिलती है। तालाब स्नान, अगर हम तालाब में स्नान करते हैं तो उससे भी इज्जत मिलती है। दरिया में नहाना, उससे हमें रोग नाश होता है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। अब मैं आपके लिए थोड़ी और ज्ञान की बातें लेकर आई हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें। हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रख के हम थोड़ा सा अपना काम सुधार सकते हैं। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे अच्छी तरह जियो। खाली ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह जीना भी चाहिए। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ छूनी नहीं चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन उसे ध्यान से गौर से देखना ज़रूर चाहिए। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते, उन बातों को जीवन में भी उतारना चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं और कभी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन उन बातों को थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। हो सकता है कि बेहतर काम करने के लिए कोई आपकी तारीफ ना करे, पर यह जान ले कि बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक बड़ा पुरस्कार होता है। कार्य के प्रति लापरवाही या देर से अथवा ना करने की प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को धोखा देना होता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, किसी भी दिन का अफसोस मत कीजिए, अच्छे दिन हमेशा खुशी देंगे और बुरे दिन अनुभव देंगे, इसलिए हर क्षण का आनंद उठाने की ठान लीजिए। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो पाए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि यही ईश्वर की मर्ज़ी है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो, फिर आपसे कोई नाराज़ हो तो कहना। सच बोलती हूँ तो टूटते हैं रिश्ते, चुप रहती हूँ तो खुद टूट जाती हूँ। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। इम्पॉसिबल को गौर से देखिए, वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। कालवास, प्रत्येक वार को काल का निवास अलग अलग दिशाओं में होता है। रविवार उत्तर की ओर, सोमवार वायव्य, मंगलवार पश्चिम, बुधवार नेतृत्व, गुरुवार दक्षिण, शुक्रवार अग्निकोण, शनिवार पूर्व। इसलिए किसी में शुभ कार्य के लिए इन दिनों में संबंधित दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार को उत्तर में वज्र से शुरू करके एंटी क्लॉक वाइज चले। संबंधित वार को संबंधित दिशाओं की तरफ से विषैली किरणों का अंश आता जाता है और वह अपना क्रम बदलती रहती हैं। यह क्रम ठीक उसी क्रम में बदलता रहता है जिस क्रम को भारतीय ऋषि महर्षियों ने काल दिशा निर्धारित की है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा में शारीरिक रूप से विषैली किरणों का सामना करना पड़ता है और कार्य सफलता में भी बाधाएं आती हैं। उस पर ऐसी किरणों का प्रभाव होने से जब वह सामने वाले व्यक्ति के पास जाती हैं तो उसके शरीर से एक ऐसी गंध प्रवाहित होती है जो सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। काल निवास की गणना नंबर वार घड़ी के विपरीत दिशा में चलकर करनी होती है।

सुनने वालों अब हम आगे चलते हैं। छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल। छिपकली तो आप सब लोग जानते हैं और गिरगिट होती है कैमलियन, और अगर हम सपने में इन दोनों को देखें और उसका क्या फल प्राप्त होता है अब मैं वो बताने जा रही हूँ सुनने वालों। रोते हुए अगर हमें छिपकली या गिरगिट रोते हुए मिले तो उसका हमें फल मिलता है मनोरथ सिद्धि। हंसते हुए अगर हमें सपने में ये दोनों हंसते हुए मिलें तो उनका फल मिलता है भयानक घटना। सोते हुए अगर ये दोनों हमें सोते हुए मिले तो उसका फल मिलता है देर से फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल हमें जल्दी नहीं प्राप्त होता। जागृत अवस्था अगर हम इन दोनों को सपने में जागते हुए देखें तो तत्काल फल प्राप्त होता है, तो हमें तुरंत ही उसका फल प्राप्त हो जाता है सुनने वालों। भोजन करते समय कुछ भी फल ना हो, अगर ये दोनों हमें भोजन करते हुए दिखाई दिए सपने में तो उससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता।

विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।